शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुनाए निकती एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स यानी अली बाबा और 40 चोर। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, गीत सुनिए।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारिक गवाह है, यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 40 Thieves में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन सस्त सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिलके ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निखती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपेनहाइमर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55FM पे इंटरनल पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर। जी हाँ, आप चुने फावन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप सबको हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फैफ तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे करे 80 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था। वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

Mighty Mukesh is the heart of millions. फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेक इतनी फैफ सैफ तक नौशाद अली के साज पर. और लता जी

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ, आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिन ट्विन शस्त्र और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

कारण कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाएं मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो है क्या ख्याल है, अगर जो मैं आपको ये सुनाऊं। महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेटिव ट्विन, शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

ये दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तू ऐसे कहा देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप भी हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर ये आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाज़त हो तो सुना दूँ। ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिल के सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन जी नहीं, एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ। फिर ये अनुपमा में से निकाल कर नेखती सस्त और हेमंत कुमार के साज है, लता जी है।

0: क्षमा कर।
1: उठो गाओ।
0: चलो मुँह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाना है।
1: अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है।

धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, फिल्म अनुपमा में से निकाले हैं हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की। और निगेटिव सेंसेस का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जहाँ आप भी हैं मैं भी हूँ, तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार?

हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत। एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ़ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनकी आँखों की तारीफ़ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चास साज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटे पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओ परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जी हाँ, फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए, माइत मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, इस तरह से।

वाह क्या बात है लता जी, और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म झूला में से निकाल कर, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। हाँ तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है

सुरेश वाधिकारी जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं आओ मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से

दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है, ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में रूना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रूना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं।

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डका डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज़।

0: चले
1: करते हैं प्यार समझ में आया
2: तकरार समझ में आया
1: चली हो कहाँ देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।

0: समझ लो
1: तो हम भी करते हैं प्यार समझने आया।
2: फिल्म कॉलेज गर्ल निगेती एन एफ इफ्तिखार रफी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगेती द्रीन तख्त एन एफ इफ्तिखार से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी ने कहते द्रीन तख्त का ये फिल्म है हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते नहीं कहते द्रीन तख्त का। आप चूने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर अगर आप चूने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से हम पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

0: से तौबा।
1: हाँ वह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो मुकेश जी जो है वो प्यार करता है, लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है। बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका खिलाफ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये जी हाँ, ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप तो ऐसे ना थे फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैती मुकेश, मैती मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

0: मैदी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दो होंठ हिले, ये गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: श्री रामायण के प्यारे श्रोताओं, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं रामायण का चतुर्थ कांड, किष्किंधा कांड।

श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त जनों, जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनक दुलारे सीता को खोजते हुए शबरी द्वारा बताए ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे, तो ऋषिमुख पर्वत पर बैठे सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हे अंजनी नंदन हनुमान, देखो तो सामने से दो सुंदर पुरुष आ रहे हैं। तुम ब्रह्मचारी वेश में जाकर पता लगाओ कि ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं और किस हेतु से इधर आ रहे हैं। यदि ये बाली के भेजे हुए हो तो तुम मुझको संकेत कर देना, मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। तो भक्तों, तब हनुमान जी ने विप्रवेश में जाकर राम जी से उनका परिचय पूछा, तो प्रभु श्री राम जी

श्री रामचंद्र प्रभु ने विप्र रूपधारी हनुमान जी को अपना परिचय दिया तो हनुमान भाव विवल हो उठे, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया, शरीर रोमांचित हो उठा, मुख से शब्द नहीं निकलते। फिर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भक्तों, इसी प्रकार होता है भक्त और भगवान का मिलन, सेवक और स्वामी का संयोग। दया सिंह श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को बाहों में पकड़कर उठाया और हृदय से लगा लिया। राम प्रभु ने हनुमान जी को और हनुमत ने प्रभु को जी भर निहारा। फिर हनुमान जी श्री भगवान से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले।

शंकर सुवन केसरी नंदन श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी एवं वानरराज सुग्रीव की मित्रता अग्नि को साक्षी करके कराई। श्री भगवान ने सुग्रीव को गले से लगा लिया। सुग्रीव को तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य मिल गया हो। पश्चात लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को श्री रघुनाथ जी का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सुग्रीव नेत्रों में जल भरकर बोला, हे नाथ, मैं अधिक तो नहीं कहता, परंतु मिथिलेश कुमारी सीता जी का आपसे मिलन कराने के लिए मैं और मेरे समस्त बंधुगण अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। आप धैर्य रखें।

जब वानर राज सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को धीरज बंधाया तब प्रभु श्री राम का मन शांत हुआ और उन्होंने विनय पूर्वक सुग्रीव से पूछा कि हे वानर राज, तुम्हारी बाली के साथ क्या शत्रुता है? बाली और तुम तो दोनों सगे भाई हो, फिर क्या कारण जो बाली तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया और तुम्हें बाली के भय से यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहना पड़ रहा है? हे सुग्रीव जी, तुम मुझसे कुछ भी मत छिपाना। तो भक्तों, तब वानरपति सुग्रीव जी बोले कि हे कृपालु, दीनों पर दया करने वाले जड़ चेतन चराचर जगत के स्वामी, मैं और बाली सगे भाई हैं। हम दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, परंतु एक दिवस की बात

हे प्रभु, वह दैत्य बाली के बल को जानकर एक गुफा में घुस गया। तो बाली ने मुझको कहा कि हे सुग्रीव, मैं भी गुफा में जा रहा हूँ। तुम 15 दिन यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन में वापस न आया तो समझ लेना कि मैं युद्ध में मारा गया। तब हे दीनानाथ, मैंने एक माह गुफा के बाहर बैठकर बाली की प्रतीक्षा की। जब गुफा से रक्त की धारा बहने लगी तो मैंने समझा कि बाली युद्ध में मायावी के हाथों मारा गया, और मैंने अपने प्राणों के भयवश उस गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर रख दिया और मैं किष्किंधा लौट आया।

रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी, उस महापापी ने मेरी भारिया को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया है और मैं उसके भय से इस पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि श्रापवश बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। हे स्वामी, बाली में अप्रमित बल है और फिर उसे ये वरदान भी प्राप्त है कि जो उसके सामने आकर लड़ेगा उसका आधा बल बाली में स्वतः ही आ जाएगा। और हे रघुनाथ जी, सामने जो ताड़ के साथ वृक्ष आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति इन वृक्षों को एक बाण से गिरा देगा वही बाली को मार सकता है। अतः हे अंतर्यामी, बाली को मारना बहुत कठिन है। तब करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी बोले,

तब प्रभु श्री राम जी बोले कि हे सखा सुग्रीव, अब तुम सारी चिंता त्याग दो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। इतना कहकर श्री रघुवीर जी ने ताड़ के सात वृक्षों और दुदुम्बे राक्षस की हड्डियों के ढेर को पल भर में गिरा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब सुग्रीव विनम्र वाणी से बोला, हे प्रभु, अब मैं धन संपत्ति राज्य आदि पाकर क्या करूं? प्रभु, अब तो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका ही भजन करूं। तब श्री रघुवीर जी बोले,

जब सुग्रीव की आवाज सुनकर बाली क्रोध में आकर तीव्र वेग से दौड़ा तो बाली की पत्नी तारा ने बाली के चरण पकड़कर उसे रोक लिया और हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी सुग्रीव, जिनके बल पर आपको ललकार रहा है वे दोनों भाई कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे दोनों बल और तेज की सीमा है, आप उनसे वैर ना करें। तब बाली ने कहा कि हे तारा सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, उनके लिए तो मैं और सुग्रीव

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में हार पहनाकर सुग्रीव को पुनः साहस बंधाकर बाली से युद्ध करने के लिए भेज दिया और स्वयं वृक्ष के पीछे छुपकर खड़े हो गए। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हो गया तो प्रभु श्री राम जी ने बाली को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिया। बाली ने जय श्री राम कहकर प्राण त्याग दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण एवं हनुमान जी को किष्किंधा भेजकर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी एवं अनुज लक्ष्मण प्रवर्षण नामक पर्वत पर निवास करने लगे। वर्षा ऋतु आई और श्री राम जी के हृदय में

पवन कुमार श्री हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव को प्रभु श्री राम का कार्य याद दिलाया। तब सुग्रीव भयभीत हो उठा और हनुमान जी से बोला कि हे वीर हनुमान जी, भोग और विषयों ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया था। हे पवन पुत्र, अब जहां तहां वानरों के दल रहते हैं, वहां वहां हमारे दूतों को भेजकर संदेशा भिजवा दो कि एक पखवाड़े में सभी इस किंधा पहुंच जाए। तब हनुमान जी ने सब दूतों को सुग्रीव का आदेश सुनाकर रवाना कर दिया। तभी लक्ष्मण ने नगर में प्रवेश किया तो सुग्रीव अपनी पत्नी और युवराज अंगद को आगे करके लक्ष्मण

श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। ये माया आपकी अति कृपा से छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनिगण सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले कि हे सखा, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे जनक नंदनी सीता की खबर मिले। उसी समय वानरों के झुंड वहां आकर एकत्रित होने लगे।

सेना नरेश महाराज सुग्रीव ने अंगद नल नील जामवन एवं हनुमान आदि वीर योद्धाओं को बुलाया और बोले, हे वीरों, आप सभी चतुर एवं बलशाली हो। तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और मन कर्म वचन से प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करो। सुग्रीव के वचन सुनकर अंगद नल नील और जामवंत आदि योद्धा श्री राम को सिर झुका झुका कर चले। तब श्री राम जी ने पवन कुमार हनुमान जी को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने हाथ की अंगूठी देकर बोले, हे हनुमान, यदि सीता से भेंट हो तो उन्हें मेरी यह स्वर्ण मुद्रिका

श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, जामवंत जी ने पवन पुत्र अंजनीलाल श्री हनुमान जी को जब ऋषियों के श्राप और हनुमान जी का अपना बल भूल जाने की कथा सुनाई, तब हनुमान जी को अपना बल याद आ गया और उनका शरीर अति विशाल हो गया। श्री हनुमान जी बोले, हे जामवंत जी, मैं इस समुद्र को पल भर में लांघ सकता हूँ। रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत समेत लंका को उठाकर यहाँ ला सकता हूँ। अब आप ही मुझे उचित आदेश दें। तब जामवंत जी बोले, हे हनुमान, तुम केवल सीता जी की खबर लेकर और धीर बंधाकर वापिस आ जाना। शेष कार्य श्री रघुनाथ जी स्वयं कर लेंगे।

प्रभु भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम के उपदेश और उनकी कही हुई बातों का सम्मान पूर्वक आचरण में लाने से हमारा जीवन भी मर्यादा से भरेगा और हम भी प्रभु को पाने के अधिकारी बन सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। इसीलिए बार बार हमें श्री रामायण जी का श्रवण करना चाहिए। तो चलें, हम शुभारंभ करते हैं रामायण का पंचम कांड यानी सुंदर कांड।

मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तों, अंगद जामवंत आदि को धीर बंधाकर और प्रतीक्षा करने के लिए कहकर केसरी नंदन श्री हनुमान जी सबको मस्तक झुकाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान करके हर्षित होकर चले। सागर के तट पर एक सुंदर एवं विशाल पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल ही खेल में उस पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और बारंबार रघुवीर जी का सुमिरन करते हुए बलवानों के बलवान, ज्ञानियों के ज्ञानी, भक्त शिरोमणि मात अंजनी के लाडले अत्यंत वेग से उछले। बोलिए श्री राम भक्त बजरंग बलिहार।

जब सर्पों की माता सुरसा को महावीर हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य हेतु जा रहा हूँ। जब मैं प्रभु का कार्य पूर्ण करके वापस आऊं, तब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। परंतु सुरसा ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और अपना मुंह योजन भर फैला लिया, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। तब जैसे जैसे सुरसा मुंह फैलाती गई, हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाते गए। अंत में जब सुरसा का मुंह 100 योजन फैल गया, तब श्री हनुमान अपना शरीर अति सूक्ष्म करके सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल गए।

फिर भक्तों, लंकिनी हनुमान जी के एक ही प्रहार से लहूलुहान होकर भूमि पर गिर पड़ी। पुनः होश आने पर लंकिनी बोली, हे कपिराज, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब राक्षसों का अंत निकट जाने। हे कपीश्वर, आज मैं धन्य हो गई जो श्री राम जी के दूत के रूप में आपको इन नेत्रों से देख रही हूं। हे वानर राज, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश करके उनका कार्य पूर्ण किया।

प्रेमी भक्तों, फिर विभीषण जी ने हाथ जोड़कर विप्र रूप धारी श्री हनुमान जी से पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आप या तो प्रभु श्री राम जी के भक्तों में से कोई हैं, अथवा स्वयं श्री राम जी हैं। आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, कृपया अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। भक्तों, तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा समझाकर अपना नाम बताया। तब विभीषण जी भाव विवल हो उठे और बोले कि हे पवन पुत्र, मैं यहाँ लंका में इस प्रकार रह रहा हूँ जैसे 32 दांतों के बीच जिभ्या रहती है। हे हनुमान जी, मेरा तमसी शरीर होने से भजन तो होता नहीं, फिर प्रभु श्री राम जी क्या मुझे अनाथ जानकर कभी कृपा करेंगे?

सज्जनों, फिर हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपकर बैठ गए। उसी समय मंदोदरी सहित लंकाधिपति रावण अशोक वाटिका में आता है और काल के वशीभूत होकर सीता से अपनी पटरानी बनने के लिए कहता है, अनेक प्रकार के प्रलोभन देता। जब माता जानकी उसे प्रभु श्री राम जी के बल की महिमा बताती है तो वह क्रोधित होकर अपनी खड़ग उठाकर जानकी जी को मारने के लिए दौड़ता है। तब मंदोदरी उसे समझाती है तो रावण सीता जी को एक महीने का समय देकर वहां से चला जाता है। तब रावण के जाने के बाद सीता जी त्रिजटा नाम की राक्षसी से कहती

प्रभु भक्त आत्माओं, अंगूठी को पहचान कर सीता जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु मन में हर्ष और विषाद के तूफान चलने लगे। प्रभु श्री राम जी की निशानी मिलने से सीता जी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु फिर सोचा कि ये अंगूठी यहां किस तरह पहुंची। सीता जी विचार करने लगी कि रामचंद्र जी तो अजय हैं और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती, फिर यह मुद्रिका यहां कैसे आई। फिर सीता जी बोली, हे भाई, जो इस मुद्रिका को यहां लेकर आया है वो सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तो भक्तों, उसी समय श्री हनुमान जी वृक्ष से उतर कर सीता जी के सन्मुख प्रकट हुए।

वानर स्वभाव से तो चंचल होता ही है। चहु वो सुगंधित फल देखकर हनुमान जी को भूख लगने लगी तो हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेकर फल खाने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछलने कूदने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। जब वाटिका के रखवाले उन्हें रोकने लगे तो वीर बजरंगी ने उन्हें खूब मारा, खूब मारा। कुछ राक्षस जान बचाकर भागे और रावण की सभा में जाकर वहां का सब हाल बतलाया। तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को एक ही मुट्ठी के प्रहार से मार डाला। तब राक्षस राज रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका में भेजा।

सज्जनों, तब श्री हनुमान जी बोले, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जो सूर नर एवं धर्म की रक्षा की हेतु नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशरा और बाली जैसों का वध कर डाला, और जिनकी पत्नी को तुम छल से हरण कर लाए हो, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का छोटा सा दूत हूँ। हे रावण, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए, परंतु देह तो सबको प्रिय है। जब तुम्हारे राक्षस मुझे मारने लगे तो मैंने भी उन्हें मारा। हे रावण, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि माता जानकी को प्रभु श्री राम को सौंप कर प्रभु से वैर त्याग दो और उन्हीं का सुमिरन करो।

फिर भक्तों, रावण ने विभीषण की सलाह मानकर अपने राक्षसों से कहा कि हे वीरो, बंदर की ममता अपनी पूंछ पर होती है, इसीलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। इतना सुनकर हनुमान जी मुस्कुराने लगे और अपना शरीर अत्यंत विशाल कर लिया। जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी अति लघु रूप बनाकर एक भवन से दूसरे भवन पर कूद कूद कर समस्त लंका में आग लगाने लगे और इस प्रकार विभीषण के घर को छोड़कर बाकी सारी लंका को जला डाला और फिर समुद्र में कूदकर पूंछ की आग बुझाई और अशोक वाटिका में माता सीता के सन्मुख आकर हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिसे मैं प्रभु श्री राम को दिखा सकूं।

श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त बनों, प्रभु श्री राम जी ने सीता जी की विरह व्यथा हनुमान जी के मुख से जैसे ही सुनी तो उन्होंने सुग्रीव को कहा कि हे वीर सुग्रीव जी, अब अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई की तैयारी करो और यहां से लंका की ओर प्रस्थान करो। इस प्रकार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और समस्त वानर दल ने किष्किंधा से चलकर समुद्र के किनारे डेरा डाल दिया। उधर लंका में जैसे ही रावण को श्री राम और उनकी वानर सेना के आगमन का समाचार मिला तो उसने अपने सचिवों से विचार विमर्श आरंभ किया। उसी समय रावण का अनुज विभीषण भी राज्यसभा में आ पहुंचा और रावण को यूं समझाने लगा।

दुख दी ताकि मति पहले हर ले। इसी प्रकार रावण की भी मति मारी गई है। आज उसे नीति और ज्ञान की बातें नहीं सुहाती। जब विभीषण ने उसे नीति समझाकर कहा कि सीता को वापस करके श्री राम का भजन करो, तो उसने क्रोधित होकर विभीषण को लात मारकर अपमानित करके सभा से बाहर कर दिया और विभीषण रामादल की ओर चल पड़े। जो ही विभीषण वहां से चले तो रावण समेत सभी राक्षस एवं लंका नगरी आयुहीन एवं ऐश्वर्यहीन हो गई। विभीषण आकाश मार्ग से समुद्र पार करके प्रभु श्री राम जी की शरण में पहुंच गए। दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर विभीषण जी बोले,

समस्त आत्माओं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने विभीषण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा तो विभीषण जी बोले, हे प्रभु, वैसे तो आपके एक बाण से ही करोड़ों सिंधु सूख सकते हैं, परंतु प्रथम उपाय विनय ही है। समुद्र आपके कुल गुरु हैं, अतः इनसे विनती करके रास्ता मांगो। तब श्री राम जी समुद्र तट पर कोश का आसन बिछाकर हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके समुद्र से प्रार्थना करने लगे। परंतु जब 3 दिवस बीत गए और कोई हल नहीं निकला, तब श्री रामचंद्र जी को क्रोध भर उठा और श्री रघुवीर जी बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं एक ही बाण से समुद्र को

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अतिशय प्रिय भक्तों, प्रभु राम की लीलाएं भी अत्यंत चमत्कारी है। जिस भेद को प्रभु जानते थे वो समुद्र से पूछ रहे हैं। प्रभु श्री राम ने हर स्थान पर मर्यादा का पालन किया है, कहीं भी मर्यादा भंग नहीं की, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और प्रभु का बड़प्पन देखिए कि नल और नील को श्री भगवान ने कैसी बढ़ाई दी। करुणा के सागर ने किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखा। ऐसे दयालु कृपालु सुखदायक मैं दिन रात भजता रहूं। जय श्री राम।

प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु राम की कृपा से मैंने आपको श्री सुंदर कांड का श्रवण कराया और आपसे यही आशा है कि इस सुंदर कांड के ज्ञान को लेकर आप अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाएं। जय श्री राम।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरुमिदेवा सर्वकार्यशु सर्वदा।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं तिक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद

सुनने वालों की सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है, लाचार है, भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि स्वस्थ में परिवर्तन आवे। जिनके घर से नया शिशु ने जन्म लिया है परिवार में, तो उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनके जन्म घाट आज जन्मदिन है, उन्हें बहुत सा बधाई भी दिया जाता है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी की ओर बढ़ने के लिए, तो आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। और हर बार की तरह इसको भाई दोहरा देता हूं, महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहे थे कि ये मत सोच कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। तो मां सरस्वती को भूलना नहीं। बुद्धि और ज्ञान का भंडार देने वाले माँ सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं मैथफकांसी, तो मैं आपको हार्दिक से स्वागत करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि ये देशों में एक देश है जिसे हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। आप ना सिर्फ अपने परिवार के साथ, पर यहां जितने भी लोग रहते हैं हॉलैंड, अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक देश जहां कितने सारे मंदिरों है, और सबसे ज्यादा वही जहां जहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते कहां हैं? जाता है कि तनहाक शहर, और वहां आपको मिलेंगे मंदिरों जैसे देव मंदिर खासलान में, जो हर रविवार को और होते दाखों पे लगते रहते हैं। जरूर ये कहना चाहूंगा कि दर्शन करके जाना, जो हर रविवार 2 बजे से 5 बजे तक रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा जाता है। राधे कृष्ण मंदिर यनफा हो इस रात तनहाक शहर से, और यहां भी कार्यक्रम हर मंगलवार को 5 बजे से 8 बजे तक रहता है। इसी प्रकार से मंदिर सेवा धाम तनहाक शहर, राम मंदिर दनहाख, और शायद आप रोटरडम शहर में रहते हैं तो वहां भी शिव मंदिर नौसमानसरात, हर रविवार को सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, इसी प्रकार से राम मंदिर रोहतांग, नंदा देवी मंदिर, अगर आप सुतमेर के निवासी हो तो सुतमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो प्रिश्मालान में है, सुतमेर में हर मंगलवार को, और आप जा सकते हैं वहां का कार्यक्रम जो 6 बजे से 9 बजे तक होते हैं।

और कहा जाता है कि अगर आप दूर शहर का निवासी हो, जैसे कि अलमीर, तो श्री विष्णु मंदिर, जो यूरोपा का और सबसे सुंदर मंदिर कहलाते हैं, लोग दुनिया के अन्य देशों में से आकर के वहां दर्शन करते हैं। अलमीर का श्री विष्णु मंदिर, जो कि हर रविवार को 2 से 6 बजे तक

इसी प्रकार से हम लोग का देश में धार्मिक स्थानों भी एक दो है। कुछ ऐसा संस्थाओं भी है कि हमारे पुरखों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि एकता, एक संस्था जो 50 साल से भी ज्यादा

संस्था जैसे हिंदू परिषद नीदरलैंड, संस्था जैसे हिंदी परिषद नीदरलैंड जो कुछ 40 साल से भी ज्यादा एक संस्था जहां पर हिंदी का आपको सिखाया गया, लिखाया गया, पढ़ने पढ़ाने एक संस्था जो गौर के साथ कह सकते हैं कि मेयर दान 12,000 सर्टिफिकेट uitgeschreven. सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं. एक देश जहां पर पार्थिव लिंगम पूजन भी किया जाता है हर गर्मी महीना में. उसी में ये मैं जोड़ देता हूं, गर्मी में जब श्रावण मास आता है तो कितने मंदिरों में श्रावण मास पूजा खूब विधि विधान से किया जाता है, जरूर उसमें भाग लेना. सुनने वालों, मैं आपके साथ जुड़ा हूं सुबह का औखतंत भजन प्रोग्राम जहां से दनहाग मैके स्ट्रात सस हिंदू बासस स्कूल फाउन फरीनखिंग अलगमीन हिंदू ऑंडरवाइज की ओर से सभी बच्चों, सभी सदस्यों, सभी ऑंडरवाइजर्स और सभी दिरक्सी लेदे के ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर हम बढ़ते हैं.

इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़े होते हैं। ये सुंदर सा भजन जो हम सब चलाए गए हैं, फाहुन सोल जो तनहाख मैकेन्सरात निम्रोसेस हिंदू बासस सोल फाहुन फरीनखिंग अलखमीन हिंदू अंदरवेस की ओर से।

कहते हैं कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज अपना समय पे भी ध्यान देना।

क्योंकि समय जिसे हम जानते हैं काल से, बहुत बलहारी कहलाते हैं। रुकने वाले नहीं हैं। उसे आप प्रयोर्स भी नहीं कर सकते हैं। जिसे हम कहते कि हम उसे पिछाड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है। हमारा अगला भजन को स्पॉन्सर करने वाले हैं लिफोर्नो मेनकंदम हुक इंदिरा गांधी वेख श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर, जिनके अगर आपको वहां मालूमात करना है तो भाई सुहास महावीर से जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। जिनका तार का नंबर 00590 5 6 5 8 7 7। सुंदर सा भजन उनके ओर से।

दोस्तों कहते हैं कि ये रिश्ते भी अजीब होते हैं। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते हैं और बिना धोखा से खत्म नहीं होते।

इस पे जरूर ध्यान देना, अगर कोई विश्वास आप पे रखते हैं। नीदरलैंड्स में ये कहा जाता है, Vertrouwen je maar één keer kwijt. Aap goed samadhar hai aur samajh gaye honge.

ये सुंदर सा भजन का स्पॉन्सर करने वाले रोटरडम होफलीट टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकर स्ट्रात 46 से श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लीडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से ये सुंदर सा भजन को हम सब सुनें।

जिनके नाम से रातों में भी उजाला हो जाए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपको सपनों में भी आए और कृपा बरसाए। प्रभु श्री राम, जय श्री राम।

जो दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, वे अपने भीतर की दीपक को प्रज्वलित करता रहते हैं।

सफलता समीप्त नहीं होती। सफलता समीप्त नहीं होती, वे एक दीप से दूसरे दीप तक जलती ऊर्जा है। हमारे अगला भजन जो कि फाउन के डायरेक्शन और क्रू के ओर से चलाया जाता है, हमारे डायरेक्टर कुमार घेराव जी, जॉनी सुरुजबाली जी, शांता खेमाई जी, रजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराई जी, विजयंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, श्रीमान सुरेन जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस्ट, संजय, करण सिंह जी, गंगा जी, यूसुफ जी, मफरो रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी और राजेंद्र सिंह जी की ओर से एक सुंदर सा भजन।

ए रब, मेरे दुआओं में असर इतना रहे, मेरे चाहने वालों का दामन हमेशा खुशियाँ से भरा रहे। ये सुंदर भजन जो चलाया गया फाहुन के दिरक्सी और क्रू के ओर से, श्रीमान कुमार घेराव जी, जॉनी सुरजबाली जी, शांता खेमाई जी, रजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराय जी, विजंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, सुरेंद्र भगवान जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस जी और संजय करण सिंह जी, गंगा जी, यूसुफ जी, मफरू रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी, राजेंद्र सिंह जी और हैन के ओर से ये सुंदर सा भजन जो चलाया गया। आशा ये रखता हूँ कि आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए। यहाँ से कार्यक्रम जो दूसरा मोड़ दिया जाता है, सभी को एक शुभ दिवस।

चली मैं चली, रफी जी और लता जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने सुनवालो। दोस्तों, एक अच्छे और एक बुरे दिन, एक अच्छे और एक बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, वे है कि आपके नजरिया, आपके नजरिया, बस यही अंतर है। और उस पे हो सके तो जरूर काम करना, क्योंकि बुरे दिन बताकर नहीं गाते हैं,

तो कहा जाता है कि भरी बरसात में तो पी लेने दो और हमें जीने दो, पर ये बात में मत रहना, क्योंकि कहा गया है कि आज तक किसी जो पीने में दिल रखे हैं क्या कभी छोड़ पाए हैं। तो दोस्तों, कुमार शानू और रूप कुमार के आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, और देखा जाए कि आज एक शुभ दिवस आपके प्रस्तुत हुए। और ये मत भूलना कि अगर आप जो फिल्म शोले भी देखे होंगे, तो उसमें जब अमिताभ बच्चन अपना दोस्त धर्मेंद्र जी के लिए उनके हाथ मांगने के लिए मौसी के पास पहुँचे, तो मौसी से सब अच्छे अच्छे बातें और कर रहे थे अपने मित्र के लिए, पर उसमें एक संदेश जो जावद अफ्तर का और सलीम जी का लिखा हुआ डायलॉग्स में से मौसी जी के आवाज़ में हम सब सुने कि आज तक किसी का जुआ और ना किसी का दारू छूटा है। तो इस पे ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दारू पीने वाले भी हर बार अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ने की भी कोशिश में रहते हैं, तो औरों को बार बार सुनाते रहते हैं कि भाई मैंने तो छोड़ दिया, और चाहे आप उस पे ध्यान ना दो, फिर भी वो आपसे इसी इशारा करते रहते हैं कि मैंने छोड़ दिया है। दोस्तों, एक अगला सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आर रहमान के आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, मसाक अली, जो फिल्म में काम किए हैं अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर। फिल्म दिल्ली 6 से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और ये कहना चाहूंगा कि क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। क्योंकि सलाह देने के लिए तो बहुत होते हैं, पर खुश रहने की वजह बहुत कम है।

सुना है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जैसे कि अभी आपने सुने कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है।

पा लेने के बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही जिंदगी का सफर है दोस्तों। और जो कभी कुछ आप पा गए,

खोने का डर, क्योंकि कहा गया है पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर। हम इसी में लगे रहते हैं, बस इतना ही जिंदगी का सफर कहलाते हैं।

नुसरत और राहत फतेह अली खान के आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। दोस्तों, कहा जाता है कि पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी।

सिंह चड्डास फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और जो अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस अपना आवाज़ दिए, फिल्म में काम किए हैं आमिर खान और करीना कपूर।

दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए अनेकों तरीका क्यों ना हो, जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, और क्यों ना अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, तबलाइस्त्रन फिया इंटरनेट। दुनिया के हर एक देश में इसे सुना जा सकता है।

कहते हैं कि जीवन में एक बात तो तय है, जीवन में एक बात तो तय है कि हमारे अनुसार तय कुछ भी नहीं है, और जो तय है उसका हमें आभास भी नहीं है।

अपना बनाने की कसम खाई है, और जो कसम खाया जाता है तो वो ऐसा वैसा चीज नहीं है जिसे शायद आप सोचे कि कसम खा लिए है और चलो उसे भूल जाना। क्योंकि ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें, ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। एक चीज तो जरूर है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारी उम्र। धीरे धीरे जो खत्म हो रहे है वो हमारे उम्र है। आज कुछ पुराने गीत और कुछ 90s के रोमांटिक सॉन्ग के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहे। यही आशा लेकर कि जरूर कुछ न कुछ इसमें से आपको अच्छा लगे होंगे।

उम्र के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपका यानी आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप है, जिस हाल में भी आप है, आप सभी को भी याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी।

0: बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग सिलेक्शन मेरे हिस्से के प्रोग्राम में। कॉलेज गर्ल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं नहीं चाहिए रंग महल ना धन दौलत की शान।
1: Alexander Aerts, Corporate Finance.

फ्रॉम द मूवी कॉलेज गर्ल से भी आप सुन रहे थे नहीं चाहिए रंग महलना धन दौलत की शान। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, दमायती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं और म्यूजिक इस गीत पर दिए है शंकर जयकिशन जी। चलिए मिलकर सुनते हैं जाओ कहाँ बताए दिल।

0: मैंने तुझे कहा था?
1: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया?
1: क्यों क्यों बोलती हो भाभी?
2: मैं भाभी को झूठा कह रही हूँ।
3: बेशर्म शेखर, मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
1: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
3: होता है तो होने दो।

अभी आप सुन रहे थे जाओ कहाँ बताए दिल, द माइटी मुकेश आपको सुनाने वाले थे। आशियाना है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तलत महमूद जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं मेरा करार ले जा, मुझे बेकरार कर जा, दम भर को प्यार कर जा।

अभी आप सुन रहे थे मेरा करार ले जा, तलत महमूद जी आपको सुनाने वाले थे। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, दमाई थी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी अनजान राहें।

अनजान राहें हैं फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें। रमायती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। समझौता खामोशी कर लो,

आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में समझौता खामोशी कर लो, द टाइटल फ्रॉम द मूवी समझौता से हमने पेश किए हैं। मैंने बुलाया और तुम आए, अब दिल चाहे क्या। लता जी एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं, सुनने वालों

फ्रॉम द मूवी अपने हुए पराये से अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में मैंने बुलाया और तुम आए। नमाइटी मुकेश आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी चंद्रमुखी से हम पेश करते हैं द टाइटल।

नए निका चैन चुरा कर ले गए, कर गई नींद हराम। चंद्रमा का मुख था उसका, यानी चंद्रमा सा मुख था उसका, चंद्रमुख ही था नाम। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी चंद्रमुखी। लोफर है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आज मौसम बड़ा बेईमान है। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं नानी बेत्सी कल्लू जी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं।

आज मौसम बड़ा बेईमान है फ्रॉम द मूवी लोफर से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे सुनने वालों, और ये गीत खास करके हमने पेश किए हैं नानी बेट्सी कल्लू जी के वास्ते। प्रोग्राम को आगे में बढ़ाते हैं, और आदमी और इंसान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ नीले पर्वतों की धारा।

नीले पर्वतों की धारा भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी आदमी और इंसान से हमने पेश किए हैं, आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में महेंद्र कपूर जी। दोनों किसी को नजर नहीं आए तो क्या करे भाई, क्या करे बताओ क्या, चल दरिया में डूब जाएं।

तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो देखेंगे तो

दोनों किसी को नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाए भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्रेम कहानी से हमने पेश किए हैं। साथ ही है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है, द माइटी मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी, यानी सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं।

मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। फ्रॉम द मूवी साथ ही से हमने

अभी आप सुन रहे थे 100 बार ये कहे दिल कि आजा तुझे प्यार करे। जाना मैंने जाना तो जाना मैंने ये।

फ्रॉम द मूवी इंडियन से हमने पेश किए हैं जाना तुझे जाना, तो जाना मैंने ये। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो गीत का बोल है ये समा ये नज़ारे, बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये समा ये नज़ारे, बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ढाई अक्षर प्रेम की। सरासा हम देखे तो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। ये हवाएं सूफ में तेरी गुम हो जाए, अलका याग्निक और शान आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बस इतना सा ख्वाब है।

फ्रॉम द मूवी बस इतना सा। हाँ है, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाज़ में। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किसी से चाह कर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोई नूर की तरह होता है। फ्रॉम द मूवी क्यों हो गया ना, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आओ ना, उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं उदित नारायण के साथ में साधना सरगम जी।

अभी आप सुन रहे थे आओ ना। नसीब के खेल भी अजीब होते हैं, सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाते हैं जो करीब होते हैं। अब तेरे दिल में हम आ गए तो, फ्रॉम द मूवी आरसू से आप सुनेंगे कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे अब तेरे दिल में हम आ गए, तो अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आरजू से हमने पेश किए हैं। कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, लेकिन सदा यानी लेकिन सजा भी वहाँ मिली जहाँ बेकसूर थे हम। उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। आ कहीं दूर चले जाए हम, फ्रॉम द मूवी लावारिस से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आ कहीं दूर चले जाए हम, फ्रॉम द मूवी लवारिस से हमने पेश किए हैं। अलका याग्निक के साथ में उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है फ्रॉम द मूवी सलामी से। आप सुनेंगे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना।

अभी आप सुन रहे थे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। क्यों उदास है ऐ इंसान, तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए बेहतर होगा। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, द टाइटल आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी हम तुम्हारे हैं सनम।

अभी आप सुन रहे थे ये कैसी मुलाकात है, मैं किस हुमार में हूँ। कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आ अब लौट चले। मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह, फ्रॉम द मूवी प्यार जिंदगी है, अभिजीत और अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिलबर दिलबर फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, और आपको सुनाने वाले हैं अलका याग्निक जी।

अभी आप सुन रहे थे दिलबर दिलबर अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम। फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है, गीत का बोल है दुपट्टा मेरा। अनुराधा श्रीराम जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दुपट्टा मेरा, और इस गीत के बाद ये सॉन्ग हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी धड़कन से आप सुनेंगे नाना करते प्यार तुम्हें से कर गई।

फ्रॉम द मूवी धड़कन से हमने पेश की है। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में निकम्मा किया इस दिल ने। फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा।

शान और संजीवनी भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्या दिल ने कहा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। शर्ली जी जब कभी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली के वास्ते, झांझरिया उसकी खनक गई। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कृष्णा से।

अभी आप सुन रहे थे झांझरिया मेरी छनक गई, और ये गीत हमने पेश किए थे शिरली के वास्ते, जबकि शिरली भी ये प्रोग्राम को सुन रही है। बांध मेरे पैरों में पायलिया।

अभी आप सुन रहे थे बांध मेरे पैरों में पायलिया, हैया हो क्या मस्ती, ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के साथ में उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अलबेला से आप सुनेंगे।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टिल नेक्स्ट टाइम।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरिए राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो वांछित ये है हमारी जनता, न्यूज तो हम आप लोग को सुनाते ही रहेंगे, हमारा देश में क्या क्या हो रहा है और देश में क्या क्या हो रहा है। तो अब देखा जाए भैया, जैसे बताए गए हैं हम, जैसे अभी हम बताए गए हैं कि सूरीनाम देश में पैसा के जो है, पैसा के फरफाल्स हाइट हुए हैं, और फरफाल्स हाइट हुए हैं तो अपने के पैसवा घुमा उमाई के देख लियो, हमारे जनता देख लियो कैसे बात है। फिर दिस गयाना वाला अभी बताए रहे उ चले लगल है, बौद्धो मौडम सब ठोंक ठाक के देख चुकल है, बोले है कानावाई के जो जो फेर स्टॉप रहा, बोले अब उ चले लगल है। तो ये बातचीत है हमारे जनता। अब देखो भैया, एगो आदमी के सिपाही पकड़े मान आन खहोदन फॉर याखन इन बबाउद कॉम, जहां ना चाही शिकार खेले कि भैया गैला जंगल में शिकार खेले कि कहां गैला, मंगलवार के बात है, फेफम फिर तक यारख शिकारी हां ना दैट मेलिंग वास खमाक फंस कोतन अंदर हेनार वेख के बात है, बिनन बबाउ द कॉम फॉर नोमन वर्ड दैट द मन बीसख वाद में याख अपन कपुआ, भैया कपुआ के दागत रहा और बिनन बबाउ द कॉम आदमी रहत रहा, और बताएंगे फॉर्मूलन फॉर्मूलन वर्ड कि अदमिया एगो कपुआ कापी बारा वार बै है ट्वेस कोतन ऑफ ए डियर सो हेवन खलोस। तो बोले नार द आन लेने फन मेल ने ही ऊपर सिपाही जो हुआ पहुंचल है, तो देखे भैया हुआ दागी से है वापन वार फोर सीन फन खल्दख और पपीर पौरदारम बोले हुआ पे, और बोले हैगा ने साल ऊपर फेरद तो फन मान वर्ड नंबर से इसकी अपु बंदूक की अपाई की ना पाई ओ खबितवा जो रहा, बोले बन का बोले है विल इन द बबाउ द कॉम में रहा हमारी जनता, जहां पे आदमी रहे है तो हुआ तो कहना मांग तक मैं भैया देखिस कपुआ देखिस गोज भैया, तो बोले ना जाए लाग ले यार मसालावा में हमें छौके के है तो ऐसे बतिया है नानी, जब मसाला आदमी जे सोचे तो सोचे आप का यार देखल जाए बबाउद है कि बबाउद ना है, यहू से बबतिया है तो 18 बरिस के लड़का फ्री नंबर ऑफ सीरी आंखें बांची हुए भैया बप्पाल गैल ओकर संगे बेटवा के लेके गैल है जाल गिरावे भैया गैल मछरी पकड़े। सूरीनाम देश में बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत गर्मी है शायद है सूरीनाम देश में, और इतना ज्यादा गर्मी है बोले फिर तक खराद हो जा है। तो ये आदमी बप्पा और ओकर बेटवा गए ले और बोले है गो कनाल है गो गुतरो है गा फ्रीडम ब्यूरोक्रेसी आमे, तो जो हुआ गए है तब मछली पकड़ा बेटुआ बोले है अपन बाप से बोले हमें बड़ी गर्म लगे, बोले हमें इफ पौड़ ली बस लुंडवा पानी में कूदल भैया कभी ना निकल के आल पाल बहुत दुख के बात है, तुन है हेट वाटर इन हिंग ओम आफ्त कुलन कोरदाना मेरे से इनफाल दत है नीट में शेख बारवास ओन दांस अ सुख अक्सी लुकते हेट नीट ओम हेम तो फिंदन और सिपाही उही माइल है दैकस ब्रांतवेर गई लेगा, तो उकर लेखाम संझा आफन तीर संझा के निकारी से तब तो उसी कर मर जाए भैया। तो ई बना दुख के बात है, तो सुनील दत्त गजरी भी कर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। तो सूरीनाम के जनता के हम ही बताई है कि आप लोग वहां पर पौड़ी उड़ी भैया बचाई के, अब देखो हम जाएला फीस प्रेसिडेंट रेसलांत के ओर हम जाएला नानी, तो रेसलांत काम बोले भैया एक बड़ी बड़ी नाम आदमी बोले बहुत सलाफ है फीपिया एंड दुनिया भर की चीज के बोले हैं, और ये एनपीएस के प्रेसिडेंट है गेगरी रेसलांत के बातचीत हुए जनता, द टू नाम द प्रॉब्लम में स्ट्रोंग फोर्सिन इन रिसेंट अनकोंड के फन लात हैकिंग दो दे नेचे सूरीनाम बोले स्ट्रोंग बड़ा प्रॉब्लम है ओ के ने यारन बोले 2014 16 में अन खदरोन ऑफ आउटब्रेकिंग फन प्रोडक्ट
उसी कैपेसिटी तो कभी एगो अच्छा न्यूज लेके भी आओ भैया गगरी रुसलान आदमी के तू आओ डरवावे हम जानी हुआ जब देखते शुरु मुंह गिर जाए भैया सब कोई के फोरात अपन चिरा किरा कार सुर धल्ले रहे असाय तो एक इलेक्ट्रिक से ओपलाद बार चिराग भी सबन धल्ले रहे हैं कारण की जब स्त्रोम गिर जा भैया तो उसे कहा बोले हैं अपन घर अबे अंजोर कर सके हैं। हम आप लोग को एक गीत सुनाना चाहते हैं और ये गीत कौन सा है, दिल कहता है, खुयानी से बॉलीवुड फैशन थेगा देवरा राखा।

En dat was wel een hele goede mens. Dat heb ik wel genoten. Ik ga vanuit jullie ook. Toe je ego dilke hita hai. Goeie aan deze Bollywood fashion. Je agar ja hem sunna chaate to sun sakte hai. दोस्तों एक औरत भैया आयला सीता गौरी चरण गजरी भैया गया है सुनील गजरी भैया गया हम सबको हम बहुत प्यार देते हैं स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में तो बातचीत ये हो रहा है जनता आप फकांसी से जाना घूमने को फकांसी प्रयुद है तो इधर उधर जाना तो ना कुछ पकड़ के जेबी में धल्ले भैया एक औरत गए रहा फकांसी और फकांसी गैला फकांसी सु आवत रहा भैया और जब प्लेनवा पर रुकल बोले अब यसुआ पहले तो यसुआ जब पहरी से भैया तो ओके कुछ काट ली से भाई ये आयल है ख्रिक्स एलान से आयल है ख्रिक्स एलान कोस से और जब लंदे भैले फ्लिकते को तो बोले अपन पर यसुआ पहरी और यास के जेबी में दुगो स्कॉर्पियन रहा नानी अब देखो कौन चकल सुवे है बस स्कॉर्पियन ही औरतिया के काटलेस भैया काटलेस ब्रांटवेर फॉन दिसल द्रोफ वेर द फ्रो ईस्ट ओके मेजी से हेल्प मिलले लुफ्टहाफन में औरतिया बोले हमार मुड़ी पिरा है और जहां काटी से सोचे बरैया रैया काटिस प्यार मार ब्लेफ अनस्प्रिग मान दिसल द्रोफ के सिपाही इनफिस जारे सिकन हेज लेगे हैगा और बोलेगा आई ले स्पेशल टीम आयल है तो ईदुन स्कॉर्पियनवा के पकड़े से रेप्टिल एक्सपर्ट फॉन ब्रांटवेर वेर नार लुखाफन गस्टूर ओम ए दीर वेलिग ते फांगन एन द सोर्ट फास्ट टू स्टेलन हेट ब्लीक ते गान ओम एन गीले फाइव स्ट्रीप Schorpioen, ook bekend als de gele Middellandse zeeschorpioenen. Deze soort behoort tot de giftigste schorpioenen ter wereld. De bichi bole na, midden na een schorpioen, ke bole bichi kaart lezen over het jake. Als sabse gevaar waren raha, het gif bevat krachtig. Op bole he ook zenuwen letsel bereik en sab antastikker deze. Volwassen doorgaans is niet dodelijk, maar kan wel hevige pijn en andere klachten veroorzaken. Bole ietje schorpioenen mille he Noord-Afrika mee. Turkije met Arabische schiereilanden mee. Hoe het die precies in de jas van de vrouw terechtkwam, is niet vastgesteld. De vrouw was kort voor de incident vanuit Kos naar Duitsland gevlogen. De gevangenschorpioen is na de incident overgebracht naar de reptielen. Dus na Eurotia pakkerke derela, maar bij Patana Kaisito Yasuwa met Chelge Baya. Jeba, cheat heb de Kobaya Hamdjaila Turkije mee. Turkije के तुलन जानो है तो Turkije के भैया हुआ के बोले है Turkije wil arrestatie Netanyahu om misstanden tegen de menselijkheid Turkije बोले Netanyahu के चाहिए पकड़ के बंद करे के तुर्क के मिनिस्टर बोले है यूसीसी से पर भैया नेतान्याहू के मुड़ी पे दोनों हाथ है त्रिंब के ओके कैसे छियो देश फ्लोट फ्रॉम 5 तक बोतन विल अफलोपन में फुटसल एंड हेल्प कुदर ना द गासा स्ट्रू ब्रेंगन मा इसराएल फन निंदर द दा दूर द स्केपन ओंदर फ्यूर ते नीमन ते एंटेरन एन होंदर द ओफार्दन ते अरस्टेरन ओंदर हेन वार ओक 3 नीदरलैंडर्स मेंसे दुस यात्रा खाइक पानी भैया बोट से वहां पे का बोले है गासा में ते इसराएल ओके दाग के सब अरमियन के और का बोले अरेस्टेर कले से हमारे मौसी हमारे नानी लोन तो हमारे ख्याल से या ही घंटा हो गया है हमारे समाचार को हरित राम दिन का बोले फिर यहाँ पे के पार्लियामेंट बोले है जो मिनिस्टर फ्रॉम बैतलान साके है गारे मेलफेन बाउफाक बोले हैं बोले वो अपन को फरवाना खोले जो बैतलान से आवे मतलब उनका टेमना है वन अबे को फरवाना खोले वही को फरवा ली के बोले वो खाली दुनिया के शायर करे भैया और रिसल्टात को सुनाई बन करे होकर उमदा तो का नाम है गा मिनिस्टर फ्रॉम बैतलान से साके फन इंटरनेशनल हैंडल एंड सामान वर्कन और बोले तेईस द फोर करके प्रयोग जब हम लोग के मिनिस्टर
जात रहा राम ने, तो बोले बड़ी क्रिटिक ले फर करत रहा, बोले रेस खतरा फाने मिनिस्टर, अब बोले न्यू ब्लैक फोकस द फिया पियर दैट बोफा यूज द द गेने इज दिस स्टेज आइलैंडर इज, और बोले मेल्विन बोफा वाज द मैन दी ऑलटाइम आउट द स्टूल गिंग स्प्रिंगन हरदम कूदत रहा, बोले मिनिस्टर वहां फिया पी के बोले खाली बैठलन जा है, बोले आइलैंडर गेगा stond hij al eerste op en ja, de minister is weer uit landen en bla bla bla. Abole ietsje juato op die apparaat kreeg, bhaiya. Bofa, tab deko Brazilië ja hai, te hiya ja hai, te hua ja hai. Bole kai kai des ja, ab deko do do dada ke tulun jano, bhaiya. Dada bole ala, kuli must go na India. A do do bole hai, is sab NDP er, bhaiya bole hai. Do do hal keihard uit naar regering Simon. Met deze mensen ga je het land niet kunnen ontwikkelen. Maar kijk toch hier, hele bhaiya, jun. इसे करी से भैया और एक बड़का माफिया ग्रुप पकड़ाने भैया तुम जानो एक मिला लाश हो गया रहा सूरीनाम देश में वो फिल्म माकर ओकर बारे में। तो दोस्तों आप लोग को यही कहते हैं कि हमारा समाचार यहां तक था, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जा रहे हैं और आगे को दोस्तों और अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और हमारा प्रोग्राम पुराने नंबरों की बहार प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं और अपना पुराने गाने की ओर हम बढ़ते हैं और चलते फिल्म अनमोल की ओर। नीखती नीखने शस्त्र का भीगा भीगा बदन और भीगा भीगा बदन और मेरा चंदन की तरह महकते हैं, फिल्म अनमोल मोती का ये गाना दोस्तों आओ मिलकर हम सुना जाए।

और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है, और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और प्यार में क्या क्या हो जाता भैया, छोटी सी मुलाकात में प्यार हो जाए और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी, जिंदगी का ये गाना है निखतिर होंदत और फिर शस्तक का, जिसमें राजेंद्र कुमार राजकुमार विजयंती माला जीवन महमूद हेलेन ने और इसमें काम किया है हमारे दोस्तों।

हम प्यार के सौदा करते हैं और एक बार दोस्तों और प्रकाश और ये गाना है ओ राधा तेरी बिना और ये मस्त भरी गाना है फिल्म राधा का सनम गोविंदा जुही चावला ने इसमें काम किया है और आओ मिलके इस गाना को आज हम सुना जाए ये इसमें कौन सा मजा है दोस्तों।

बसे अपना यही है। ओ राधा तेरे बिना क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों और ये गाना जो हम आपके लिए अब चलाते हैं ये भी एक बहुत पुराना गाना है, कोई प्यार की देखे जादूगरी। ये भी एक फिल्म है जो अभी हमारा पैदाइश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जितनी पुराना ही गाना है उतने मजा उसमें है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आओ मिलके और सुना जाए ये क्या है।

कोई प्यार के देखे और जादू भरी दोस्तों। और आगे को बढ़ते हैं किए हैं, और दोस्तों ये गाना जो अब हम चलाए जाते हैं ये भी एक पुराना ही गाना है, ऐ मेरे जिंदगी तू प्यार का सपना फिल्म के नाम है, नेकती होंद ए नेक ने शस्तक का लता जी इस गाना को गाया है। इस फिल्म में काम किया है विश्वाजीत और मालहा सिन्हा ने दोस्तों, और को अशोक कुमार भी इसमें काम किया है, जॉनी भी काम किया है ना हम जॉनी वॉलकर दोस्तों, हेलेन काम किया है, और इसमें कितने लोग काम किया है, आओ मिलके सुना जाए ये कौन सा गाना है दोस्तों।

और खो गया जाने कहां जो है, ये एक पुराना गाना है दोस्तों, आओ मिलकर और सुना जाए इसमें क्या है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों।

और कमरिया करे लपालोप और लॉलीपॉप लागे है तू दोस्तों। और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे। और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों की चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

ओ ये जो तेरी पायलों के छनछन है, आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान, आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बामी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

नमस्ते नमस्ते नमो नमः। हरिओम मैं किदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सभरा प्यार नमस्कार और सदा और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी इस्लाम को और आप सभी को भी हरि ओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णादत्त भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोतागण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का प्रोग्राम 30 अगस्त 2020 का ये हसीन प्रोग्राम सरनामी संगीत लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों ये अश्वमेध लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ भी हो जिस हाल में हो घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार और प्रेम मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे एक शुभ शाम मैं थेल्फी लाइस्टर प्लेजर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस ब्लेस्टर फिया इंटरनेट के लहर द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। सभी जानकारी अगर आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से कुछ ब्रॉडकास्ट ऐलान करना चाहते हो यार तो आप तार करें ये दो नंबर पर कंतोर 9 7 3 5 6 2 7 4 Australië-Katar-nummer 9 7 3 2 6 2 7 7 Vrijdag tijdens kantooruren kunt u op deze volgende nummers altijd bellen. उससे पहले आप श्रोताओं ने 3100 प्रोग्राम को सुन रहे थे जो खास करके रोशिता बहन जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की इस तौत्रिक से रोशिता बहन जी सदियों से आप सभी को सेवा करती आ रही है। ये आशा उम्मीद है हमारे फुल टीम की तरफ से कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद रोशिता बहन जी और आपको भी हमारे फूल टीम के तरफ से एक हैप्पी हैप्पी संडे हैप्पी हैप्पी वीकेंड। अगर आपके घर पे एक खुशी का दिन मनाया जा रहा है हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटी या तो एक बेटा ने जन्म लिया होगा या किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो जो भी जश्न आप सभी घर पे या तो पे मना रहे है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयाँ ही बधाइयाँ खुशियाँ ही खुशियाँ प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को आप सभी के जो नेक मनोकामना है नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए ना। अगर आपके घर पे एक दुख का खड़ियान पड़ा है आप एक मातम में हो गमी में तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है मातम में शरीक है ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। बीमार लाचार है आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए बेहतर हो जाए चंगा हो जाए नित्य फुरखीत है जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में बातें शाते करते रहना फनहर्त बीटर्स का। अब कामयाब हुए तो हमारे फुल टीम की तरफ से तहे दिल से बधाइयाँ ही बधाइयाँ और हो सकता है कि आप आज कल या परसों कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता का कोई बात नहीं है ब्रेफ खून दौर खाम दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ फट्रॉव और जोर तोर से बढ़ाते रहना बंधु और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी दौड़ दौड़ कर आकर आपके कदमों को भी चूम सकते हैं। साथियों देखो मेहनत तो है दौलत का यारी है Blessings to all of you en natuurlijk bedankt voor het luisteren.
साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ इस शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार कंपोज बाय ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्म श्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसीलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदा कहते ही रहेंगे, बंधु की हेप तू नास्त और तैतलीफ। हम लोग इंसान है, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक, और तीसरा अध्याय में सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, बीच में कुछ ज्ञान की बातें हैं, शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा। तो स्टे ट्यून, आप ही का तो आवाज है। हैप्पी हैप्पी वीकेंड, हैप्पी हैप्पी संडे आप सभी को, और नतील खनीत फन उनसे सरनामी संगीत रफी साहब जी।

0: मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रवि साहब जी के मधुर आवाज में। तो साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूं और जैसे मैं कह रहा हूं, जबरदस्त प्रोग्राम है, कुछ पुराने और कुछ नए सॉन्ग्स का मिक्स है। आज का इस हसीन शाम जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करने वाला हूं हमारे सुरिनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार, उस्तादों का उस्ताद और बैठक गाना का महागुरु द ग्रेट रॉबी उदित राम जी के ब्यूटीफुल आवाज में। आप सुनिए चिट्ठिया लिख लिख।
1: चिट्ठिया लिख लिखा हम भेजी वैली

Issues, tado ka o stado, mga Surinam, this ka international kalakar, the one and only maestro, Robby Uditram G. Pandra minute guzarne wala hai, paanch bachkar aur aap chun hai, found Hindustani, radio par jor tor se sarnami sangeet aap sun rahe hai. Ek aur jabardast gayak hamare Surinam, this Hollandese ka jo apne jeevan mein kafi se jada मैं जाने दादा हेमंत कुमार के गाना भी गाता था. मैं एक बात कर रहा हूँ जबरदस्त गायक एडियार सीफतख तख्तख दवाने नौली माएस्ट्रो श्री दत्त शिव नंदन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये थी सुंदर बयान सुनिए. हो ओ चोरी चोरी से मिलो.

Шабаш, шабаш, шабаш. Dit wordt dus gaik uit de jaren 70, 80, Suriname, des Hollandes, ka. Ook Janice Jada, Dara Hemant Kumar, ke. Ja, gane gaate the. Sriman Sridat Sivanandan ji. आधा मिनट गुजर चुका है, पांच बजकर रविवार का शाम का प्रोग्राम जोर तोर से सरनामी संगीत चल रहा है यारो। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडीज का इंटरनेशनल कलाकार और बैठक गाना का एक गुरु मां द ग्रेट बिजावती चैतू जी के ये सुपरहिट सॉन्ग तोरी मथुरा।

शाबाश शाबाश जोड़िस्त गायक हमारे सुरीनाम देश और रॉटरडैम शहर का उस्ताद रॉबी गोगार जी का ये बिल्कुल मजेदार सॉन्ग शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान। जोरजस गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का बखान ऑफ द ढोलक दोर खुरुइत में बोंगो हारमोनियम एंड लीड सिंगर उस्ताद का उस्ताद शंकर चंद्र भोज जी का ये बिल्कुल मैथिली बैठक गाना आप सुनिए ओल्ड इज गोल्ड।

शाबाश जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश ऑल इंडीज का द ग्रेट उस्तादो का उस्ताद ओक ऑफ द ढोलक हारमोनियम संग द वन एंड ओनली शंकर चंद्र बोस जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयाना श्रोताओं सुन रहे थे। दो मिनट गुजर चुका है साथियों, 5:30 बजकर और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे दैन हाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा आप सुनिए फाहुन FM.NL पर। साथियों वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने कुछ कहावतें कुछ उदाहरण लिख कर चले गए हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं, काफी दिनों हुए और कुछ जीवित भी है और ये बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यही यश उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते ही रहेंगे, तो जरूर आप गौर फरमाएं। अर्ज क्या है पुराने जमाने का महाज्ञानी श्री ऑगस्टिनस और ये कह रहा है कि द वर्ल्ड इज अ बुक वी नीड रेस्ट लेस्ट एंकल इन ब्लड सेड। एन हेले गुए और eentje om te onthouden, hè? Dus hij bedoelt daarmee: probeer links en rechts de hooise ketel 1 of 2, 3 buitenlandjes te pakken. Mahajani en de uitvinder van de atoombom, Sri Albert Einstein, nee, hij zat Joki. Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen. Eens de leider van Engeland, Sri Winston Churchill, die zei hoor, die trotse mensen verdwalen liever dan de weg te vragen. Begrijp je dat? Hè? Dus ga maar liever vragen dan verdwalen, maar omdat ze trots zijn, willen het ze zelf erachter komen, kirastwaka hai. Ja, poetsle bhai, sneller ba. Een Russisch spreekwoord luidt als volgt, Zatio, die zelfs de dood krijgen we niet voor niets, want hij kost ons het leven. Een hele goede hoor. Nog eentje van grote uitvinder, de great Albert Einstein, en ik haaiaroki. Ik ben een diep religieuze ongelovige. Dit is een enigszins nieuw religie. Marcus Cato, de oudere Nikahai Satyoki, wijzen leren meer van dwazen dan dwazen van wijzen. Onze eigen Bapu Sri Mahatma Gandhi ji Nikahai, mataon ke bare mein aroki, als ik als vrouw was geboren, zou ik een opstand ontketenen tegen elke pretentie bij de man die de vrouw beschouwt alsof zij geboren is om zijn speeltuig te zijn. Toon Hermans Nikahai Satyoki, te leven is een gunst. Te weten hoe is een kunst. Eentje van Jules Deelder. In Rotterdam verdienen ze het. In Den Haag verdelen ze het. En in Amsterdam smijten ze het over de balk. En de laatste van vanmiddag is een Chinees spreekwoord en luidt als volgt, Satyo: wie een boek voor de eerste keer leest, leert een vriend kennen. Wie het voor de tweede keer leest, ontmoet een oude vriend. Tot
दिया आप लोग कुछ ज्ञान की बातें, इसने खास करके यश अमीर लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते रहेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं साथियों, 7 मिनट गुजर चुका है 5:30 बजकर। अगला बयान एक मशहूर गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का सोमारी जगई जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और वो सुनाती है आप सभी को बंसुआ कटावे राजा दशरथ। एक अति सुंदर सोहर है, मिलके सुनते हैं। एंजॉय द म्यूजिक, क्योंकि सरनामी संगीत है यारो, अपने लोग है।

și mășur ganevalie mare suri nandish ca dikha jaye baswa katave raja dasarath ganevali hai so mari jagai ji ke beautiful awaaz mein. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और घड़ी की तरफ देखता हूं साथियों, 17 मिनट रह गया है 6 बजने में. एक और जबरदस्त नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंड देश और सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार बन चुका है, सुजल उमराव जी का बिल्कुल नया सॉन्ग पर दे.

कलाकार हमारे सुरीनाम देश और इंडिया का जबरदस्त गायक द ग्रेट सुजल उमराव जी का बिल्कुल नया सॉन्ग। धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है पहला अध्याय का जो लास्ट सॉन्ग है, लेकिन उससे पहले दो और सुना दूं। और ये बिल्कुल नया उस्तादों का उस्ताद एंड लायन बैठक गाना का जबरदस्त गायक द लायन ऑफ बैठक गाना द वन एंड ओनली मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग जो रिक्टिंग 230,000 व्यू के तरफ जा रहे हैं। अति सौखेलवात ओरिजिनल कॉम्पोजिशन 20 सेशन 20 या हमार मशीनिया भैया बोले दो दो उसका भाव है अच्छा मोहित से खाइए अच्छा बेटा।

मौज खाइए बेटा, हमार मशीनिया न्यू न्यू न्यू फ्रॉम द लायन ऑफ बैठक गाना उस्ताद का उस्ताद मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह सिवना जी का बिल्कुल नया सॉन्ग। 7 मिनट रह गया है साथियों 6 बजने में, और वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान आप सुनिए एक भजन के रूप में। मैं 15 साल का था जो पहला बार ये नगमा को सुना उस तारों का उस्ताद हरी शिव बालक जी के ब्यूटीफुल आवाज में। तब से मैं सोचता था कि किसी दिन जरूर ये गाना को मैं निकालूंगा अपने आवाज में। तो मेरी आवाज में सुरेंद्र भगवान दीन जी के आवाज में आप सुनिए हे कृष्णा हे कान्हा, अरेंज एंड कंपोज बाय

0: क्या बात है, म्यूजिक तो जोर तोर से सुनाई दे रहा है मेरा ही आवाज में, यानी कि सुरेंद्र भगवान दीन जी के आवाज में आप ये अति सुंदर नया भजन सुना जो मैस्त्रु ज्वाला ने अपने अंदाज में कंपोज किया है। थैंक यू ब्रो। तो साथियों 3 मिनट रह गया है 6 बजने में, तो भी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत।
1: लाइव फ्रॉम द हार्ट, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम अल्प श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 30 अगस्त 2026 का हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो वक्त जब मैं आ रहा था स्टूडियो के तरफ तो देहरादून का तापमान तकरीबन 22 और 23 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था। Het is heel bewolkt, vanmorgen had het een beetje geregend, maar nu is het wel droog. Dus ja, premier, die samen, oh, maar je voelt hem getrof, ze afschroot, dan kun je bar finishen, schwaag, dan kan ik hem. तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसलो बिलोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतीलक बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रम। 3 मिनट गुजर चुका है, 6:07 साथियों, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, देन कन्फर्म हिंदुस्तानी रेडियो। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना हो, मार्ग पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑन इंडिया भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटेरेंस कंटोर उर फ मांडाग टॉट फ्रेडाग ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स फॉर इंफॉर्मेशन 07-365-2247। कंटोर का तार का नंबर है और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-365-2277। जो भी रेडियो का काम होना, देंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, इवेंट फन हार्ट वेलकम। हम लोग के बारे में रेक्लाम बनाते रहना साथियों, थोड़ा बहुत चर्चा भी करते रहना, और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोरा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, मिलजुल के काम करते हैं और आप सभी सुनते हैं तो हम लोग भी रहते हैं, तो हम लोग के बारे में जरूर बातें शातें करते रहना। अपने बिरमनवान से, अपने परिवार से, अपने कलीगों से हम लोग यही चाहते कि जैसे आप लोग हम लोगों के प्रोग्राम सुनकर मजे ले रहे हैं, सभी के रिश्तेदारों को लिहाज और साथियों भी बिरमनवन भी हम लोगों के प्रोग्राम को सुने, तो ज़रूर हम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत बातें शातें करते रहना, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेम्बर बने और को भी बनाए, को तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। En je hebt het al gehoord, hè? Afgelopen donderdag waren we live op de radio met onze karaoke team. 6 omroepers, waarvan 1 dame heeft meegedaan. En komende maand, elke laatste donderdag van de maand, gaan wij dan live karaoke voor u zingen. Het begint rond de 6 uur en het gaat door tot maybe 8 uur. Dus blijf luisteren en volg ons. To aap hem loka member bane, aapko to dheer sara fayda hi fayda hai. Aur hum loka ka ye jo faun ka parivar hai na, wo to badhte ja raha hai. To aap bhi aakar isme shamil ho jaye. Natuurlijk volg onze social media, ook van onze karaoke team en van onze omroepers. Dan hoort u zeer zeker waar wij binnenkort voor u live gaan zingen. तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 07-365-2247 en vragen naar onze teamleider maestro Johnny number 1. Meestal wordt hij automatisch doorverbonden naar hem toe. 7 minuten gezet chuka hai saathiyo, 6:00 रविवार का रात्रि का प्रोग्राम, हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का, जो मेस्ताल हमारे सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक होता है।
एक अति सुंदर बयान ने रख चुका हूं प्लेयर में एडीआर सेवन तक फंड टॉप फॉर्मेशन उस जमाने का द नौजवान स्टार्स अंडर लीडिंग फ्रॉम द ग्रुप्स नंद कुमार गंगा एंड चंद्र सेन गंगा उनसे एक उस्तादों का उस्ताद द ग्रोटे ओमरूपर एंड उनसे लेयरमेस्टर बाय द कराओके टीम मेनेर गंगा उस जमाने में वो ये मशहूर बैंड का ड्रमर था सैक्सोफोन प्लेयर एंड सिंगर तो मिल के सुनते हैं उस जमाने का ये अति सुंदर बयान जो 1975 में इतना पॉपुलर हुआ और इतना चला इन लोगों का रिकॉर्ड कि स्टेमरा ने सोचा कि इन लोगों को एक खाउड एलपी भी दिया जाए क्योंकि दिन ती टाइम मेयर दैन 10,000 एलपीज वरकोक्त एंड प्रोसेंट हैबन से दैट बरेकेंड एंड दैन क्वामन से ऑफ खाउड आउट है गेफेलिसिटेट नॉकमास भाई गंगा तो उस जमाने का ये पॉपुलर नौजवान स्टार्स का मशहूर गायक था श्री हेंद्रिक पराग जी और उन्हीं के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए चली आओ कंपोज एंड अरेंज बाय बड़का भैया नंद कुमार गंगा जी

Evergreen song by Maestro Rudy Tangali. Ye milan bada pyara. 10 मिनट रह गया है 6:30 बजने में. अगला बयान जोरजस्त संगीतकार हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडेस का मैस्ट्रो हफीज खान वाहिद हुसैन जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और उन्हीं के मधुर आवाज में और उन्हीं का सजाया हुआ मस्ताना ऑर्केस्ट्रा के साथ और संगीत पर आप सुनिए कौन रंग मुंगवा.

कौन रंग मुंगवा जबरदस्त संगीतकार हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडेस का है यार 70-80-90 डॉन एंड डोली मैस्ट्रो हफीज खान वाहिद हुसैन के ब्यूटीफुल आवाज में और उन्हीं के बनाया हुआ बैंड मस्ताना ऑर्केस्ट्रा का साज आप सुन रहे थे। 5 मिनट रह गया है साथियों 6:30 बजने में। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडेस का देन हंक्शर का सिल्वा के माई द ग्रेट इंदिरा राम चरण जी ऑप सन बेस्ट दिल में तुझे

सॉन्ग आप सुन रहे थे, गाने वाले थी मशहूर गाने वाली आई डी आर 70-80-90 हॉलैंड देश श्रीनाम देश का डिग्रेड इंद्रा रामच रंजीत और खबरों के मेरा नंबर सिलवा के माई 1980।

नमस्कार साथियों, एक मिनट गुजर चुका है, 6:30 वक्त हो गया है ना, कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारों की वो जब गुजरता है गलियों से तो महक सी आती है, उसे देखकर मेरी आंखें अक्सर शर्मा सी जाती है। उसकी बातों में गुरूर की आंखों में नूर दिखता है, उसकी बातों में गुरूर की आंखों में नूर दिखता है। कोई मेरी नजर से देखे वो सच में कोहिनूर लगता है। उनका नाम कहते कहते सुबह से शाम हो गई, उनसे मिलने की खुशी में नींदे भी हराम हो गई। हम दिल थाम कर चलते थे इश्क की गलियों में जनाब, हम तो दिल थाम कर चलते थे इश्क की गलियों में ऐ जनाब। जो देखा उन्हें एक नजर, एक ही जिंदगी थी जो अब उनके नाम हो।

पता कि तुम मुझे कितना चाहते हो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कितना चाहते हो, मगर सुन लो हम बस तुम्हें ही चाहते हैं और अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। दुनिया में एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ, दुनिया में एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब हजारों लोग आपके खिलाफ हो, कि जब हजारों लोग आपके खिलाफ हो तो वो इंसान आपके साथ खड़ा हो। जो एक बार दिल में बस जाए, जो एक बार दिल में बस जाए उसका ख्याल मिटाया नहीं जाता, जो सांसों में महक जाए उसे भुलाया नहीं जाता। लोग कहते हैं मोहब्बत दोबारा भी हो जाती है, लोग तो कहते हैं मोहब्बत दोबारा भी हो जाती है, पर जो दोबारा हो जाए उसे मोहब्बत कहाँ नहीं जाता।

कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी तो इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं, नजर तुम आते हो। ये भी होता है, स्वार फरलिफ्ट है जिसे कहते हैं। तो ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अपना महान अनाउंसर साथी और हमारे कराओक टीम का गुरु लेयर मेस्टर द वन एंड ओनली मैस्ट्रो चंद्रशैन गंगा जी को सुनिए अन लिट आइडियार 75, toen was zijn stem nog ook heel jong hoor. Bekeraar hij jaren, sunane wala hij onze eigen maestro, de one and only Chandrasekhar Gangaji.

यार और गाने वाला था उनसे एक उस्ताद का उस्ताद महान अनाउंसर साथी और कोलीग हम लोग का कराओक टीम का गुरु उनसे लेयर मेस्टर भैया चंद्र सिंह गंगा जी के ब्यूटीफुल आवाज में यति सुंदर बयान आप सुन रहे थे जो यार फेफन सीफन तक का ओप नाम था। 17 मिनट बाकी है साथियों 7 बजने में, तो अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का जॉनी बच्चू को लाते प्रोग्राम में एड म्यूजिक फरमासी दोस्ती ग्रुप। ढेर सारे जो बजवैयान म्यूजिशियन है उस जमाने का अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि कीबोर्ड और मांडोलिन बजाने वाला केसरी प्रसाद, महान तबला मास्टर ढोलक मास्टर कीबोर्ड प्लेयर क्रिस पूरन भी नहीं है इस दुनिया में, अन्नी फमै हेल ख्रोत बसिस्ट इवन आइवन राजकुमार बस एंड स्लाख गिटार वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो मिलके सुनते हैं जबरदस्त शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान विद इंडियन सिलेक्शन, जिस दिन इस दुनिया से नफरत हितार पे रहा रेखी ललई, वो भी उस जमाने में बहुत ही मशहूर ऑनरवेस में था और साथ ही साथ जबरदस्त म्यूजिशियन लुशियन कल्लो सैक्सोफोन, राम भरोस है क्लारिनेट पर, और जॉनी बच्चू जो ये गाना को गाया है उस जमाने में द लीडर था ऑफ द सीम क्लासिकल बैंड दोस्ती ग्रुप। तो मिलके सुनते हैं जिस दिन इस दुनिया से नफरत।

शाबाश मशहूर गाने वाला हमारे सुरीनाम देश का जॉनी बच्चू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे। 10 मिनट रह गया है साथियों, 7 बजने में अगला बयान एक और जबरदस्त गायक आईडीआर सही तख्त सुरीनाम देश हॉलैंड देश का विजय बच्चा सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए बह अंखियों से धार।

En hoe ze meneer in de jaren 70, 80, 90 kwamen Sjoerd dan wel uit Suriname, Nederland. Wie jij betje zingt die keer beautiful amas mee. Aapje die zonder bijaan zo'n reet he. Schemen nu toen hij is aan het beginnen met toe. Maar het doosra adjaai Sarnami Sangeet. Mee aap sunye aakhri bijaan. और वो सुनाने वाला है हम लोगों का अपना जाना माना हुआ कॉलिक दवाने दौड़ी माएस्ट्रो अनिल सरजू जी के ब्यूटीफुल आवाज में. आप सुनिए दिल तुझे दिया था रखने को. म्यूजिक री अरेंजमेंट बाय माएस्ट्रो अशोक अयोध्या जी.

कौन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ यार तो 4 मिनट गुजरने वाला है 7:00। 30 अगस्त 2026 सोमवार का यह प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। नाटक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नाटक बदंत फॉर एट लाइस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइश जरूरी खबरें इश्तिहारे देंक अनफाह हिंदुस्तानी रेडियो किफायत से नाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अब मात पर हम लोग बना करो। जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल टेनिस कंतोर उर फन मांडा टॉट फ्रेडा ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंतोर 0 7 3 6 2 2 7 4 और स्टूडियो के तार का नंबर है 0 7 3 6 2 2 7 7। जो भी रेडियो का काम होना दें कन्फा हो हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना रिक्लाम बनाते रहना साथियों क्योंकि अगर आप सब हैं हम लोग साथ तो हम लोग भी हैं ना आकर अच्छे अच्छे प्रोग्राम रचा कर सजा कर आप सभी को सुना देते हैं तो जरूर हम लोग के बारे में बातें शाते करते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है को हम लोगों का कारा ओक टीम तो द्रिक्वार्ट आप सुने लाइव रेडियो पर हेल्प हुई रेस्पॉन्स लामदलक एंड ओक फन सुरीनाम ओक हेल मोए रेस्पॉन्स। तो आप भी आकर हम लोग का इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनती जा रहा है ना आप में आप भी उसमें आकर शामिल हो सकते हैं। Volg onze social media van de omroepers, ook van Faun Hindustani Radio. To aap zarur sunenge ki kahan par hum log binnenkort aap logon ke khatir live gaane ke liye tayar rahenge. To zarur aap aaiye, want you bent dan natuurlijk ook van harte welkom. To aap bhi jald se jald Faun Hindustani Radio ka member bane aur ro ko bhi banaye. आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें 0 7 3 6 2 2 7 4 want dan wordt hij automatisch doorverbonden naar onze teamleider Don and Only Maestro Johnny number 1. तो आप भी आकर हमारे इस जो फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार है आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए शामिल हो जाए शामिल हो जाए। 7 मिनट गुजर चुका है साथियों 7:00 कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स आप सुनिए। रंबा हो इन अ न्यू फ्रेश फ्रॉम द मूवी धुरंधर रणवीर सिंह और शश्वत सचदेव का ये सुपर हिट मूवी म्यूजिक डायरेक्टर क्या बात है अपनी अंदाज में ये बप्पी लहरी का ओरिजिनल कंपोज किया हुआ सॉन्ग है लेकिन कुछ नए म्यूजिक डायरेक्टर्स इस जमाने में सोचा कि लातो दे नंबर इन ए न्यू यश होया एंड इन द फिल्म धुरंधर आप सुनिए महान गाने वाले इस जमाने का द ग्रेट मधुबंती बख्शी जी के ब्यूटीफुल आवाज में शश्वत सचदेव का न्यू फैशन कॉम्पोजन
रंबा हो।

क्या बात है, तौबा तौबा हुसन तेरा, तौबा तौबा। गाने वाला करण औजला, लेखक भी करण औजला है और प्रोड्यूस बाय बिग बैट बीट्स। अंत ये प्रूफ 17 मिनट गुजर चुका है, 7:07 रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अगला बयान दो घूंट, अति सुंदर बयान है, श्रुति रानी के आवाज में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान। म्यूजिक सजाया है आरडी बर्मन जी और ये रिमिक्स सुनिए बॉम्बे राजा का।

0: तो जिया साथियों, ढोकूट अति सुंदर व्यायाम इस जमाने का जबरदस्त गाने वाली श्रुति रानी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुन रहे थे अति सुंदर व्यायाम ने। ओरिजिनल कंपोजिंग बाय आरडी बर्मन, नया कंपोजिंग है इस जमाने का द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर कोहिनूर मुखर्जी। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि हमारे बात आशमी को सेवा करने वाला है जबरदस्त कुलीखा और हम लोग का लेयर मेस्टर फ्रांस कराओक टीम द वन एंड ओनली चंद्रसेन गंगा जी बड़का भैया, वो भी स्टूडियो में आ चुका है, तो हमारे बाद जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। एज वेल अलेन वन भाई यूसेफ इस मोमेंटेल में फाकांसी। वनर कौन थे? ओ आई गए पुर्तगाल से। ओ रहते इतनी मन्ना मिस्किन कौन थे नौ इन स्टूडियो और लकोर्टी नौ लातर में। 21 मिनट गुजर चुका है साथियों, साढ़े यानी 7 बजकर और रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अब जरा दिल को थाम लीजिए, जबरदस्त गायक इस जमाने का मैस्त्रो जुबिन नौटियाल जी को लाते प्रोग्राम में कंपोज अंत अरेंज बाय आकाशदीप सेन गुप्ता और अल्फाजे है मुकुट सूर्यवंशी जी का, ऑल्सो अरेंज बाय अमन। इश्क मेरा क्या बात है, 45,456,641 keer al bekeken en beluisterd. Het is een groot compliment van deze maestro.
1: Dekhna, main ek din bahut bada singer banunga. Sari duniya mere gaane sunegi. Har jagah mere hoardings lage honge.
2: फिर तो तू मुझे भूल जाएगा ना?
1: कभी नहीं, तेरा और मेरा साथ सदियों तक का।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल को छू लेने वाला, नगमा और सुनाने वाला था इस जमाने का जबरदस्त गायक फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, द वन एंड ओनली मैस्ट्रो जुबिन नौटियाल जी। 4 मिनट बाकी है 7:30 बजने में साथियों, अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई गाने गा चुका है। Born in Pakistan, the man with the golden voice from Pakistan, Atif Aslam ji ko laate hai program mein. Shiraz Upal ka arrange kiya hua ati sundar bayan, together with Raj Ranjot, and lyrics hai Raj Ranjot ji ka Husn Ishq mein, the great Atif Aslam ji.

सुंदर बयान हम इश्क में ग्रेट सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान मास्टर अतीफ असलम अरेंजर्स श्री राज उपाल अल्फाजे राज रन योद। 3 मिनट गुजर चुका है 7:30 बजकर यार, तो कुछ आखिरी शेर सजाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अर्ज क्या है यारो, मिलने को तो दुनिया में कई चेहरे मिले, मिलने को तो दुनिया में कई चेहरे मिले, पर तुम सी मोहब्बत हम खुद से भी ना कर पाए। अनजान अपने आप से वो शख्स रह गए, अनजान अपने आप से वो शख्स रह गए, जिसने उम्र गुजार दी फुकट में औरों की फिक्र में। जिंदगी खर्च कर दी तुझे पाने की चाहत में, जिंदगी खर्च कर दी तुझे पाने की चाहत में, इससे बड़ी कीमत क्या होती है तेरे प्यार की। सोचने वाली बात है तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसकी होती है जो तकदीर लेकर आता है। कहां मिलती है खुशियां अपने जीवन में, हर कदम पर यहां राहों पे है गम पता। मेरी चाहत से तेरी दूरी का ये आलम ही ये ना हो पाया के एक मोड़ पे हम तुम आते। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में साथियों, यारी का ये सिलसिला निभाइए रखना दोस्त, यारी का ये सिलसिला निभाइए रखना दोस्त, जान तो नहीं मांगेंगे आपसे, पर गुजारिश है कि जान के जाने तक दोस्ती बनाए रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये था कुछ आखिरी शेर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है और लाते हैं इस जमाने का द क्वीन ऑफ मेलोडी फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री द वन एंड ओनली श्रेया घोषाल जी को, और उनकी मधुर आवाज में आप सुनिए द सॉन्ग कल्याणी। Written and arranged by Suhas Mohideen और कंपोज किया है केशव त्योहार। क्वीन ऑफ मेलोडी इस जमाने की द ग्रेट श्रेया घोषाल। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये गाना जो जुलाई में निकाला गया था अब तक 130,821 keer al bekeken en beluisteren. Dat is op zich een heel record. A great song, special aap sabhi priye priye shrotaon ke naam.

Queen of Melody, Shreya Ghoshal ji ke beautiful awaaz mein aap ye iti sundar bayan sun rahe the. Kalyani saath de raha tha Sania Iyappan. फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री. अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे पाकिस्तान से जो काफी नगमे गा चुके हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उस्ताद राहत फतेह अली खां और काविया लामाए के आवाजों में आप सुनिए अति सुंदर बयान. अल्फाजे है अजय साहब जी का और म्यूजिक प्रोड्यूस अरेंज किया है पारस नाथ जी. मेरी सांसों में बसा है तू न्यू फैशन विद बुडापेस्ट सिम्फोनी.

को छू लेने वाला नगमा आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। महान गाने वाली इस जमाने का फ्रॉम पाकिस्तान, जो काफी बॉलीवुड सॉन्ग्स गा चुके हैं, राहत फतेह अली खान के ब्यूटीफुल आवाज में साथ दे रही थी काविया लेमाए, और साज था जबरदस्त बुडा पेस्ट का जो सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा है उसी के साथ, और संगीत पर लाइव रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे। ये अति सुंदर बयान को कंपोज किया है श्री पारस नाथ जी और लिखा है अजय साहब जी। सात मिनट रह गया है साथियों 8 बजने में, तो देखा जाए तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने के। हमारे बाद आप सभी को सेवा करने वाला है दो जबरदस्त साथी हम लोगों का, कोई खास महान अनाउंसर साथी और गायक नवाने नवली भैया चंद्रसेन गंगा जी, मित भाई यूसेफ दी खान साम हेड प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड फॉली प्रेजेंटर, और इन दोनों के प्रोग्राम में आप जरूर तार करके अपना मन पसंद नगमा को गुजारिश फरमाइश कर सकते हैं। आप तार करें। तो इतक था आज का मेरे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। ये शोमीर लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों की जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये शोमीर है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ संगीतकार का दास्तान नाम कार्यक्रम खलिंग में ओट इस गोद गीत और गजल। जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, मुझे आप सभी जरूर इजाजत दे। और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूं आप सभी के याद में और आप सभी के लिए।

साथियों, जाते जाते कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ हमेशा की तरह, और आज भी कुछ धारा हेमंत कुमार के याद में।

0: मेरा वतन जापान, आप सुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में हमने पेश की। जैसे आप सबको पता है आज 27 तारीख अगस्त है, जी नहीं 27 नहीं 30 तारीख अगस्त है और आप तत्पर है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हृदय से स्वागत किया जा रहा है। भैया यूसुफ भी मेरे सामने बैठा हुआ है। भैया यूसुफ आप छुट्टी से आ गए हैं, बताओ यूसुफ का कल गुरूर तू वक्ति वक्ति हाँ अब खोल ले तो माइक्रोफोन कैसे समझ आ रहा है तू फकांसी से रही
1: ले सब ठीक ठाक है भाई। फकांसी अभी बहुत मोई रहा, खूब खनित कर लिया हम लोग, मोई वेर रहा।
0: अच्छा टुक टुक पे घूम ले सुनी
1: टुक पे
0: घूम ले। मोई ए मोई नचे वेर बहन हम दुई हफ्ता ना रहली। बहरहाल सुन ले वारो श्रोताओं, आपसे क्षमा मांगते हैं और लेकिन अब फिर आ गए हैं गीत गजल के कार्यक्रम लेकर, जैसे आप सुने हैं और आप तार कर सकते हैं नल से इफन तक दरी फाइफ से तक तुन तुन तक सेफ ने फेर तक, या तो नल से इफन तक दरी तुन से तक तुन तक सेफ ने सेफ तक। गीत गजल के कार्यक्रम में आप तार कीजिए और कुछ कहावत हो, कुछ नज्म हो भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, अगर ये आपको सुनाऊं तो क्या ख्याल है, रफ़ी साहब की आवाज़ में। जी हाँ, बहुत प्यारा गज़ल है, गीत गज़ल के रात्रि तो लीजिए गीत गज़ल के का हम आपको सुनाते हैं गीत गज़ल का ये गीत।

0: तू ही वो हंसी है रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की और फाहून हिंदुस्तानी रानियो, जबकि गीत गज़ल के कार्यक्रम इस वक्त जारी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई लाइन पर है भैया यूसुफ? अच्छा ओके फाहून हिंदुस्तानी रानियो खुद नाखुंद
1: हेलो मैं तेजस्विला
0: ده مفرو يرسلا هو ستمت مفرو يرسلا سوري
1: هم لي خوب تو گھوملن سلی
0: هم نہ گھوملی ہیں یوسف گھومی سے
1: یہی تو
0: ہم تو خالی بازار میں جات رہی لی ہاک سے مارک میں
1: سن فور خوی کھاد کو ان خبر ہم بھی اس سے کلوب یہ سب پھر کو تلن کیسے تنا بفور دے ہے کہیں کہیں فور خوی کھے خبر ہے ار خاز یاک نہیں تنو میں 15 کے ہم نے بھیا نے سوتے ہم نے بیل ان بیل کرے
0: نو ایر سی
1: کمک نی دور
0: ہاں ہاں ایر سی سوری ون فور ان در دان تو وی کا ہم نہ رہی لے اختر الکار ہمار ہمار بہنوں ہی گزر گئے رہا تو
1: sorry
0: sorry ana nahi nahi silant mein dusra open near tani silant avan jat rahi
1: oh yeah ne ek can the dooth war if mai need to fatal oh yeah you so sense bole ek khas over amrit ganesh sense bole na bole akela rahe ghamli ya ma you sab ek banu alien hai so is a bhai mein se andar marhal hai ek ke kindra ani ke comments on me ja mamma mere induce bene ko natürlich mai ke bo viel besser
0: Nee, maar dat is juist goed. Ze zeggen, als ik bezig ben, dan is dat een soort
1: hersenschimmelastiek. Ik heb niet iets doen bij mezelf. Ik weet het niet hoor, maar ik kom soms tijd te kort voor allerlei dingen.
0: Nee, klopt. Inderdaad. हम कभी कभी कोई समझ ना पाएला भेटा बोले मैं फुगा ही ना हो सो अपने मन में सोची हो कहीं हो खाई ना फुगा है इस मसमन के बेसक है इतना है तो
1: बट एक स्ट्रीम एक स्वयं एक स्पोर्ट एक ओ करा ओ सिंग एंड एक बट अंडर द मेंस अब एक कनिया फ्राइडे वाज इक वेग अ पार डेज इन फ्रांकरेज मिट अ पार मेंस वीच वेल गुड मेंस मा फ्रेंड अ पार गुड दन है वार वी कम पार
0: नहीं प्रीसीस
1: अच्छा दिस इज गजेलग हुआ Wij willen Jozef ze ik lag net in bed.
0: Nee, Jozef gaat op vakantie ze.
1: Ja, maar ik was ook een paar dagen weg.
0: Oké, okay, nee.
1: Dan willen we vandaag inbellen toch, als jullie er zijn?
0: Nee, nee. We gaan een telefoonnummer wel de bullet aan geven.
1: Ja, ja, ja. Als ik naar Ghana, ik ga jullie willen eten, we zijn Ghana voor een film, die film weet ik niet. Dan wil ik Ghana ten eerste ga jullie hem.
0: Ah.
1: Want jullie idee is een nezere bekaker, jullie gee hee. वरना घायल कर देती दिल से दिल तक आ जाता है दिस सुनने मरे
0: अरे तू कहे चुप आई गए दूर जाते तो
1: मैं दूर अपना गावे तू अबे सब गाते तो तू ना उकरी है एक वेल अन मोपी फॉर यू अबे
0: ओ या बोल बोल
1: अरे स्पेशल तेरे खा ढली
0: हां खबाल दो फिर खबाल बेन बनियूत
1: सुन ना अबे तो बच्चे से झाड़ू डंडा लेके धर आई हमें
0: ना झाड़ू डंडा हिया ना
1: Ik probeerde laatst mijn leven een stuk positiever te maken door er heel positief aandacht te geven en te krijgen. Dat is het.
0: Ja, mooi. Om te zoen, om te zoen. Zoen te rijgen, je moet je ook verlengd kan delen.
1: Nee, ik ga niet verlengd. Dit is het kort en krachtig.
0: Nee, ik ben het behoorlijk.
1: Ja. Zullen we aandacht te geven en te krijgen?
0: Ja, precies.
1: Ja, toch?
0: Nee, inderdaad zo.
1: Wacht, nee,
0: ik heb het even lekker. Ik heb
1: Oké, oké.
0: Nazar bacha kar. Nee. चली गई रेखल और कुछ बिसोंदर का कर ली वीकेंड में ऋषि
1: एक बस एक बस फर्स्ट एक बस वीकेंड रे पर दाग
0: ओ अच्छा ओके
1: एक बस बीच ना फ्रांकरेज में बीच खाली वंदर बीच पे तो पार एंड देन या द सेकंड टाइस नेचुरली दिस थिंग इट इज आउट ऑफ व्हाट डू नीड हियर
0: ओ हैव यू किन कर ओ सॉन्ग इन द वीकेंड
1: या ड्री सॉन्ग
0: ओके मोइतो कौन गाना गाइले
1: जो वादा के आओ और मुझे कितना प्यार है तुमसे और हर दिल जो प्यार करेगा
0: गाना गाएगा
1: देश है तो हाल
0: का सब मोइन
1: और देश तो को मोइन है मरे देश के देश के फ्राक वे यूली चलते चलते चलते चलते
0: ओ फाला तमगेशकर
1: या
0: पाकिस्तान
1: या नहीं सर है मोइन Maar goed, kom voor de rest.
0: Hey, Ursie, dank je wel.
1: Ja, geen dank hoor.
0: Sorry voor de twee afgelopen weken.
1: Geen niet,
0: ik
1: snap het wel.
0: Ja, nee, hoor. Ja,
1: door omstandigheden, ik snap het wel. Ja.
0: Neem
1: jullie niet kwalijk.
0: Nee, dat is normaal. Hindustani bullet is swabhavik, dat is normaal.
1: Ik ben blij dat ik even kan inbellen.
0: Ja, nee.
1: En dat ik even lekker even heb gebabbeld.
0: Nou, wij zijn ook blij dat jouw stem gehoord te hebben.
1: Ja,
0: en niet wij alleen, alle luisteraars zullen ook jouw stem hebben gemist. Door een paar regels, je doet gaan weer om, is karatunje, zegt ja.
1: Ja, het gaat steeds beter. Maar ik ben trots op mezelf.
0: Hè? Dat is het eerste wat je moet doen. Je moet eerst van jezelf houden.
1: Juist,
0: eerst trots
1: precies,
0: op jezelf zijn. Te doen, schrikken.
1: Precies.
0: Ja, je moet eerst van jezelf houden. Dat is
1: ja, zeker weten. Maar ik vind altijd mijn kistnummer van Ravi. Nummer vind ik altijd zo mooi.
0: Toevallig ik erbij dat ik mijn kist niet zo niet heb.
1: Zeker?
0: Een answer choice.
1: Oh, leuk.
0: Ha, film op Asnak.
1: Oh, als je dat zegt, Jozef, als je over een film praat, ik kijk al amper Hindustanse met geduld naar, weet je, ik kijk mooi.
0: Is goed. Nee, begrijp ik.
1: Ja, maar ik luister wel naar mooie nummers. Acha?
0: Abo.
1: Hey, maar leuk dat jullie even gesproken te hebben.
0: Ja, wij ook.
1: En een fijne avond en een fijne uitzending. En tot horen jullie.
0: Dankjewel. Jij ook heel veel luisterplezier, mevrouw Ursie. En tot de volgende keer. Ja,
1: dankjewel. Goeie
0: fijne avond.
1: Ja, dag.
0: ये थी उर्सिला जी रोटरडाम के रहने वाली और कोई लाइन पर है फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंद
2: भाई
0: खुदनाफंद फ्रोसिला कैसे रहले
2: या खत खुद भाई
0: सब कुछ प्रीमा
2: या
0: थकाई उतरल
2: हाँ
0: ओ तब मोई अब आज रात को मोई से ऐतरस कर लिए जैसे हिंदुस्तान में बोले आज तो घोड़ा बेच के सूती है एक कहावत तो बोलो घोड़ा बेच के सूते है
2: अच्छा
0: सिला एक है नित लास्ट तक फॉलो मत कहावत सुना तुम जाए फ्लिक मशीन हम तो ना लिख ले हुई है थकल रह ले हुई है वेल मत वेल लिख के नहीं फंदा के ब्ले मार के
2: पर फिल्म मौसी
0: हां
2: टीम टीम टीम
0: तारों के दीप जले
2: हां
0: टीम टीम ड्रीमल तारों के दीप Regel.
2: Is goed, bij en nog een fijne uitzending.
0: Sila, dank je wel. Heel veel luisterplezier en rust goed uit. En tot de volgende keer.
2: Volgende keer. Ja hoor, bij.
0: Dag. ये थी माशुका सीला जी अपन भी रख के रहने वाली और इस वक्त लाइन क्लियर है लाइन खाली है आप तार कर सकते हैं सुनने वाले श्रोताओं और तार का नंबर तो आप जानते हो और अगर हो सकता है पास में नहीं है आपके आस पास में नहीं है तो हम बताते हैं नौ सेफ तक दरी दो सस्तख दुन तक सेफ नेफ तक या तो नौ सेफ तक दरी फैफ सस्तख दुन तुन तक सेफ नेर तक तो जिस समय आप कार्यक्रम में तार करने के लिए तार के नमन ढूंढ रहे होंगे या तार ढूंढ देखे वो बदकमर के लंकिया पर मुफराऊँ टेलीफोन वहाँ धरल है हाँ खोज इसकुदान ओके चलिए हम एक गीत चला रहे हैं और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के अनाउंसर चॉइस है मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म उपासना में से निकाल कर गीत का बोल नहीं बोलेंगे बस आप सुन लीजिएगा

मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रानी हो। जबकि आज गीत गजल के रात है, लाइव कार्यक्रम सोनदख देर तक खुशतस है और आप तत्पर है। हमने पेश की उपासना में से ये गीत को निकाल कर, तो चलिए पहला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है इर्सी जिला, इर्सी जी के लिए, इर्सीला जी के लिए, शुभकामना के साथ, रोतरदाम के रहने वाली हैं। तो इर्सीला जी, आपकी मांगी हुई गीत हमने प्लेयर पर रखे हैं, बस सिर्फ बटन दबाना ज़रूरी है। तो रोतरदाम के रहने वाली इर्सीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए और इर्सीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इर्सीला जी इस तरह से आ रहा है मांगी हुई गीत आपकी।

0: नजर बचाकर चले गए वो शंकर जय किशन के साज पर। गीत गजल के कार्यक्रम में हमने एक गीत पेश की और रवि साहब की आवाज़ में। हाँ, ये गीत पेश हुआ रोतरदान के रहने वाली इर्शिला जी के लिए। इर्शिला जी, उम्मीद की तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने मिल के चलाए। इर्शिला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। चलो देखते हैं कोई लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदरापन। हेलो हेलो
1: ओ हेलो तदिया
0: दत फ्रॉम बिया, कैसे रह ले?
1: अरे अरे अच्छा अच्छा, तू कैसे रह ले?
0: बस चले धीरे धीरे बिया हुए।
1: मैं
0: तू प्रिया।
1: हां हम सुती गाना अन कर दे तनी से, ये तो गेरवा जोन खराब हुई है, गनोन मोई लगी सूरत।
0: ना ना, जोन गाना तू मंगी है ओके, हम ऐसा ही जान डार देवे हम और यूसुफ की गनवा मोई लगी तो की सुना।
1: अच्छा अच्छा, हो
0: ही ना सके।
1: ओ अच्छा, ओगो गनवा में खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता।
0: इतना ग्रेट गाना और तू बोले गाना ना मोई लगी सुना। हां
1: हां हां, मैं बूढ़ा हुआ ताकत हुई।
0: सुन, तू आंखें मूंद ली है, बैठ गई है और गनवा पर कॉन्सेंट्रेट करिए, तो सुनिए कितना विशाल गाना है। बोल तो
1: अच्छा
0: बेया इतरा और कौन गाना रहा बेया?
1: खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता
0: हूँ। खुदा भी आसमां से, रीखल इतना काफी है। अच्छा भैया, बताओ कोनो खसाक दे उधर रख ले कि ना? कि तू खाली काना में घर फेरफी करते रह गई ले?
1: मुड़िया इतना बार मार लास्ट टाइम था, मुड़िया लाफ हो ये
0: है ना ही आज इंद्र बेसिक मेरे में आंध्र देंगे दन स्पेल आंध्र देंगे सर रोल ये है
1: या क्लाइंट इंद्र भी पकान सी से
0: कान को भी रख कान को भी
1: रख या
0: इतनी भैया
1: टेलीफोन में मरुए हमारे बैठ गए
0: कुछ बोले
1: तो टेलीफोन में मरवे मिट गए।
0: ओ मिट गए,
1: पटा दिए बत्तियां।
0: ओ अच्छा, इसको अंदर
1: अच्छा
0: नहीं प्रीमा
1: या
0: इसको बेया थैंक यू वेल
1: या इसको
0: रुस को तो है। हां तू बैठ जा बंक सेल पर, एको कॉफी तबलक बना ले
1: या
0: और तू गनवा सुनिए।
1: अब बैठ के रोबे
0: ना, गनवा गनवा इतना भी साल गाना है कि नहीं ना सके तू रोई है।
1: बट जो साई गरम बैठ के रोई ला
0: ना तो खोरदेन बन कर दे अंधियार रही तो जनिए कि ओ तब बरखा ने दिखाई।
1: अच्छा अच्छा,
0: यस गुड ब्रो, भी है थैंक यू
1: या फ्रूट आन इधर है
0: साले दून
1: जो मैंने से सुने है।
0: हां और उसको
1: अच्छा शुभ रात्रि
0: या तू की शुभ रात्रि भैया। तो द फॉर
1: अच्छा सक्सेस
0: सही ना फदा
1: थैंक यू या।
0: ये थी बेया जी इधर के रहने वाली। तो चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये है करण सर चॉइस
2: बनाए जा
0: इस तरह से।

मना दीजिए और लता जी, जी हाँ मना दीजिए और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ इस तरह से आ रहा है।

0: फिल्म जाल में से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर 1967 का ये फिल्म निकली सीफ ने सशक का ये फिल्म जाल हमने पेश की वो फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, जहाँ तक मेरा ख्याल है लाइन पर कोई है। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो को दराफत
1: अस्सलाम वालेकुम, राम राम और आदाब और नमस्कार सुक्रियाकार।
0: अरे वालेकुम सलाम भैया, नमस्कार, कैसे समाचार है?
1: चले भाई, कैसे सब मोई?
0: बस चले धीरे धीरे, तू लोग के दुआ।
1: और दूसरा बुबू भी मोई?
0: हाँ सब अच्छा है,
1: मोई कुछ बातें सुनने के
0: सब मजे में है। भैया मोहम्मद, और कुछ नवा हाल?
1: हाँ एगो है गा,
0: बताओ।
1: हाँ पहले गनवा।
0: हाँ हाँ गनवा बोल दे, गनवा बोल दे।
1: हाँ गनवा है गा, अली बाबा 40 चोर मनाए जा बिगाड़े जा, मोहम्मद रफी गाय से।
0: अरे फल बिगाड़े जा अच्छा भैया मोहम्मद बताओ।
1: हाँ एगो है चलो ममता हो गई गलती, आप माफ भी कर दो मुझे ये आपकी नाराजी बर्दाश्त नहीं होती है।
0: वाह क्या बात है मोई,
1: मायके बोले तब मायके माफी मांगे तो
0: या नहीं क्लो निर्दात। और को रहा
1: ना खाली एगो पहली छोटा छोटा आवाज हीगा
0: ना तो धल्ले रहिए तो एक बार आई कती
1: नाम लिखी लाग अगर भोपाल तो मां तो जाने भोपाल छोटा या तो बरका हीगा और तो जाने वहां भी चाहिए दिख रहे और के तक मने भी फोन कर दे सब तो मिसाल छोटा वहां कोई जिला
0: नहीं खुदा है प्रॉब्लम। भैया मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद,
1: हम और करवाएगा सब सुनने वालों के लिए और नकिल के खातिर भी। अच्छा
0: आतांग सो,
1: अच्छा भाई
0: ए ब्रो ऐसे ही रही।
1: अच्छा राम राम,
0: जय सियार फैनाफंत, ये था श्रीमान मोहम्मद, जनाब मोहम्मद जना के रहने वाला। और भैया मोहम्मद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो देखो तो हाँ हाँ चलो वो गीत चला देते हैं। और वो गीत है इबन बेरुख के रहने वाली माशुका सीला जी के लिए, इबन बेरुख के रहने वाली माशुका सीला जी के लिए शुभकामना के साथ अपने माशुक के लिए जो मेरे सामने बैठा हुआ है प्रेम पूर्वक चश्मा लगाकर टोपी पहनकर। और बहुत बहुत धन्यवाद सीला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सीला जी। आपकी मांगी हुई गीत हम लोग पेश कर रहे हैं, इस तरह से आ रहा है शुभकामना के साथ सीला जी के लिए।

टिम टिम तारों के दीप जले। लता जी और तरत साहब ने मिलकर आपको सुनाए हैं फिल्म मौसी में से निकाल कर हमने पेश की भरत व्यास के लिखे हुए गीत और वसंत देसाई के साज ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो गीत गजल के कार्यक्रम में, जबकि ये चलवाने वाली थी इबन बेरो के रहने वाली शीला जी, माशूका शीला जी की तरफ से। उनके माशूक जो मेरे सामने बैठा हुआ है भैया यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, शीला जी और यूसुफ जी दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त लाइन फ्री है, आप तार कर सकते हैं 0 7 3 5 6 20 20 7 4 या तो 0 7 3 2 6 20 7 4। कभी कभी कोई कहता है हम बहुत जल्दी तार के नंबर बोल देते हैं, अच्छा चलो एक बार फिर दोहरा देते हैं 0 7 3 5 6 20 20 7 4 या तो 0 7 3 62 20 7 4। हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, इस तरह से आ रहा है और वो ये गीत

0: फूल तुम्हें भेजा है हकत में, मैं तो मुकेश दहाट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं। ये गीत हमने पेश की सरस्वती चंद्रमा से निकाल कर। घड़ी पर देखूँ तो 5 मिनट बाकी है 9 बजने में। जी हाँ, 5 मिनट 4 नहीं कर। चलिए यहाँ से पेश करते विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद हम लोग फिर वापस आ रहे हैं। भैया यू सब ऐसे ही ना, बस हम यूं गए और यूं आए।
1: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

शंकर जय किशन के साथ पर फिल्म धरती में से निकाले हैं रफ़ी साहब के गीत और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गज़ल के कार्यक्रम में। जी हाँ, सौंदख दर्द खोसी खिस्तस के कार्यक्रम में और गीत के पेश करवाने वाली थी इतरा के रहने वाली बेया जी। बेया जी, उम्मीद गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की है वही गीत हम लोगों ने पेश की है फिल्म धरती में से निकाल कर। बेया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं और वो इस तरह से है। हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चलो सुनते हैं मुकेश के ऊपर कितना आपत्ति आया है। जी हाँ, चलो मिलके सुनते हैं।

तुमसे प्यार करता हूँ ये मज़ेदार गीत हमने पेश की, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा, रात्रि का वो वक्त है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देन हाँ के रहने वाला जनाब मोहम्मद के लिए। भैया मोहम्मद, शुभकामना के साथ आपके लिए गीत चलाया जा रहा है। ये गीत आप मांग रहे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और साथ ही साथ हम लोगों के लिए, तो सभी सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद दे रहे हैं और पावन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। तो भैया मोहम्मद, शुभकामना के साथ चलिए आपके लिए गीत हम पेश कर रहे हैं, अली बाबा और 40 शोर निगदी सस्त को 1966 का ये गीत है। देखते हैं हाँ, उषा खन्ना के साज पर, वाह क्या बात है, उषा खन्ना के साज पर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर दर्द से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए।

0: उषा खन्ना के साज पर रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं, बनाए जा बिगाड़े जा, बिगाड़े जा बनाए जा। और फिल्म अलीबाबा 40 चोर का यह फिल्म है, ये निकती सस्तक 1966 का ये गीत। और चला वो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम, जबकि दाना के रहने वाला श्रीमान मोहम्मद जनाब मोहम्मद जी ने तार किया। मोहम्मद जी के लिए शुभकामना के साथ ये गीत पेश हुआ। और जनाब मोहम्मद ये गीत मांगे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए, और साथ ही साथ फाउन के हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए शुभकामना के साथ। दोनों की तरफ से भैया मोहम्मद को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है लाइन पर कोई है भैया यूसुफ, ठीक है भैया यूसुफ, ठीक है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को। हेलो हेलो हेलो हेलो,
1: हम कुछ ना सुनीला,
0: कुछ ना सुने कैसे हो सके है?
1: अब नहीं कमती।
0: हेलो
1: या
0: एक और यार भैया।
1: हाँ हेलो,
0: कैसे रह ले?
1: ओ चले है चले है, गिरत फिरत गिरत फिरत
0: गिरत
1: तो
0: फिरत
1: है
0: ना, तो खाली हाँ, फिरत चलिए गिरत ना चलिए।
1: ये वैल उधर दो हाथ कम तो मैं खबरी का
0: तो बहुत ख्याल करे उधर दो के सुन ना भैया, उधर दो तो के ख्याल करे है तो हाँ। तू का करे ओके ख्याल करे है
1: ओके ना ख्याल करीला, मैं पीछा ना छोरे तो हम का करी
0: ना ना ना ना तो
1: पीछा
0: तेरा पीछा ना छोड़ूंगा मैं,
1: प्रसीद वही साथी है, अब के तोर साथी है, जवान जवान सब तो अपन अपन रास्ता होएगे, अब कोई ना तोर पीछे, अब वही साथी बा, वही एनक साथी दोस्त वही के पकड़े रहल जाए,
0: एक साथी तेरा बड़ा
1: या तो हाँ, और के अब के साथी दे जाने, सब बोले है बुढ़ापा में खाली वही लाठी तोर साथी है। हाँ कोई ना
0: देख तू रैम कर दे, लाठी तोर साथी है।
1: हाँ ना बेटी बेटा सबके अपन अपन ले है, सब माई बाप के कब कहाँ कहाँ जाए संहारे,
0: तो
1: वो सबके अपन अपन ले हम लोग अपन लाठी लेके चल जाये, जिसने हम दे बढ़िया लाठी रहे तो बढ़िया चलाई,
0: तुम कौन दिन जब हम सुनी ब्लॉकर में लाठी मिले ना
1: या तो बढ़िया वाला बढ़िया लाठी जन तो के बढ़िया से सेवा करी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: दाते सतो हाँ, बढ़िया लाठी रही तो बढ़िया जरूर चली, या तो तुम सबके बढ़िया लाठी है,
0: जितना दिन के लिखल है जितना दिन के लिखल जी के रहे खोल,
1: प्रसीस
0: चाहे एक गोड़ से चाहे दुई गोड़ से चाहे अढ़ाई गोड़ से,
1: या प्रसीस या मत तो तू देखिए हम यूट्यूब पर ताकि ऐसा हेल फिल आउदर इंचेस होंद फिर यार खोद इंचेस होंद सो फिल यार खोद
0: नौ एक मखल सो फिर सो आउटवर्ड मार एक मुत खुसान से नौ खुसान एक मुत आलस नख सेल्फ के न दूं
1: प्रसीस
0: एक फिन आलस हेलो बहुफन वर्ड दुई
1: ने दानी से तो उपने एक संत देखा यंगर आजकल यंगर भी कितना हेलो बहुफन हैगा या
0: मखुद बेया बताओ कौन सी कुछ धल ले दारू पानी
1: कौन सी धल ली है एक एक क्या फेल एक फेल खराब पक्ष एक उपनीत है ना इट हेल्प नीड फॉर आल पत्नियास मार सो मख पत्नियास है सब बोले हैं दुनिया के हर पत्निया चाहते हैं कि उनकी पति उस पर मरे मना सब लिखल है दुनिया के हर पत्निया मना हर है और जब मरते हैं तब बोलते हैं जाकर कहीं और मरो और और जब कहीं जाकर मरते हैं तो बोलते हैं कहाँ मर गए थे
0: वो भी बोले
1: सो इस तो
0: या
1: सो इस दूस तो सेल ख़राबक देते ना मैं या खुद ना तो सने इस ख़राबक
0: ना दत्त भी तो क्यों है
1: या
0: मैं इस तरह मुहा जो तू बोले कहाँ मर गई
1: हाँ
0: इसी
1: कहाँ मर गए थे
0: मैं सुरिनाम में ना होता रहा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में होता रहा
1: छोकरा
0: कहाँ मर गया था
1: ओ या सो प्राप्त से है जिसने वह को पैदा किया तुम उसे वह देकर देखो वो तुम्हारा वह भी बदल दे।
0: वाह क्या बात है, शाबाश।
1: या
0: बेया बताओ कौन गाना मांग रहे हो तू आज?
1: इंक्लाइनर। हर रिश्ता इतने सिद्धार्थ से निभाते हैं, हर रिश्ता इतने सिद्धार्थ से निभाते हैं, क्या आखिरी में खुद अकेले रह जाता है।
0: वो भी हो
1: जाएगा।
0: अब बताओ
1: वेलकली चाहते एक हाथन हेल नी वली चे हमना जानी फेलो मेलो महाई की ना है वन दिनस किंग सुख योसेफ तेरी आँखों में तेरा जहान या ऐसा नी वली चे
0: तेरा
1: वो फिल्म कैमरन फिल्म ना लिखल है
0: तेरी आँखों में तेरा जहान।
1: हाँ, तेरी आँखों में तेरा जहान
0: मिल जाए
1: स्टार्टिंग फिल्म।
0: ओके
1: सही नहीं बोली चल बट वो नोट हो रहा
0: ओके
1: लम देख ला तो ड्राइव वो हो रहा ना नोट।
0: ओके काम हो अभी सुना
1: या ऐसे सुखा।
0: ओके भैया थैंक यू वेल
1: या थैंक यू वेल
0: हेल फील लो इस्टर प्लेजर
1: या थैंक यू वेल
0: एंड तो फॉरवर्ड केयर भैया
1: एंड बदांक ओ फाइना आफन
0: या योग थैंक यू वेल ये थी बेया गजराज जी देनहा के रहने वाली। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, रफ़ी साहब का ये गीत क्या ख्याल है जी? नहीं, रफ़ी साहब के गीत से पहले चलिए हम आपको सुनाते हैं बप्पी लहरी के साज पर ये गीत।

बप्पी लहरी के साथ, पर बप्पी लहरी खुद अपनी आवाज़ में आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, और फिल्म है सत्यमेव जयते। चलिए 9:30 का वक्त है, 3:30 है, तो अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है मेरे सामने बैठा हुआ आईपन बेरो के रहने वाला हमारा शीला जी का माशुक योसेफ की तरफ से शीला जी के लिए, माशुका शीला जी के लिए आईपन बेरो के रहने वाली हैं, तो लीजिए योसेफ की तरफ से शीला के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए योसेफ माशुका के लिए।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये शानदार गीत पेश हुआ ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो, और पेश करवाने वाला था इबन बेरो के रहने वाला जनाब यूसुफ यानी माशूक यूसुफ। अपने माशूका जी इबन बेरो में बैठी हुई है। माशूका सीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं। एक अनासुर चॉइस, जी हाँ, ये रफ़ी साहब की एक अनासुर चॉइस है, इसे सुनिए। जी नहीं, ये लता, रफ़ी साहब से पहले लता जी की सुनिए।

लता जी आपको सुनाए फिल्म निराला में से निकाले हैं नेगेटिन फेफ्थ का ये गीत है, 1950 का ये गीत है। चितलकर रामचंद्र के साज पर हमने पेश की ओफर फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत और वो है देखते हैं दनहाक, दनहाक के रहने वाली बेया जी, बेया गजराज जी। बेया जी आपकी गीत हम लोगों को, आपका गीत हम लोगों को मिल चुका है, तो चलिए हम प्लेयर में रख देते हैं, सिर्फ बटन दबाने की ज़रूरत है। बेया जी, बेया जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा दनहाक के रहने वाली बेया जी के लिए।

तेरी आंखों में मेरा जहां। और ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, हमने पेश की गीत गज़ल के कार्यक्रम में, जबकि आज सौंदक देर तक खुश से दना के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए। बेया जी, उम्मीद गीत आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक शुभ रात्रि भेजा जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। बेया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

आँखों में तेरी याद लिए जा रहा हूँ मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए फिल्म है हमारी याद आएगी और म्यूजिक डायरेक्टर है स्नेह भटकार के साज पर हम ये गीत आपको सुनाए गीत गज़ल के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है थोड़ी सी ये गीत आपको और सुना सकूँगा।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो आंच मामलों को कुछ तक तक नहीं खंत का गीत सुनाएंगे। आओ मिलकर सुना जाए कौन सा गीत है दोस्तों, और प्यार भरी गीतों का भान प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं।

और तेरी जान मैं बन जाऊं, कुछ दर्द भरी शायर भी आठ लोग को बीच बीच में हम सुना देंगे दोस्तों, कि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते हैं। पास छटक वो रहे दर्द तब मन्ना रहता है, पास जब तक वो रहते दर्द जो है तमन्ना रहता है। फायदा या दोस्तों जता है फिर एक आंख की काजल की तरह। और दोस्तों हम चलते हैं, तुझको देखा तुझको चाहा, और अगर जब तुझको देखा है तुझको चाहा है तो बीच में और क्या होता है, और तो कुछ नहीं हो सकता है ना।

देखा तुझे चाहा, परमाश श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है। फिल्म के नाम है छोटी सी मुलाकात। छोटी की मुलाकात के बाद में हम चलते हैं कुछ बेवफाई, कुछ बेवफाई बेवफाई शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे कि फूल के साथ कांटा भी नसीब होता है, फूल के साथ कांटा भी नसीब होता है, खुशी के साथ गम भी नसीब होता है। मजबूरी ही ले डूबी है और आशिक को, मजबूरी ही ले डूबी है आशिक को, वरना खुशी से बेवफा कौन होता है। हमारे यारो तो हम चलती है बाहर आने तक क्या होगी, बाहर आने तक क्या होगी, अनुराधा पौडवाल की ओर हम बढ़ते हैं।

तुझे कितना भी चाहूं और मोहब्बत इनायत कर्म दिखते हैं तो उसके बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो मोहब्बत में तीसरा होता है, ये जो मोहब्बत में तीसरा होता है, मुझे उस तीसरे से नफरत है दोस्तों, कि तेरे पास आका मेरा, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। पद्माश्री मोहम्मद रफी आशा जी का गाया हुआ सॉन्ग। इस फिल्म में माला सिन्हा धर्मेंद्र ने काम किया है और आकर सब कुछ मिलकर सब लोग मिलकर इस गीत को और सुना जाए। उस फिल्म में न सिर्फ माला सिन्हा धर्मेंद्र काम के, महमूद जी भी काम किया है और कितने लोग काम के। सुपरहिट फिल्म 1905 तक का ये गीत है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में बेवफा नहीं होती है। जिंदगी में प्यार की पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी के फितरत में वफा नहीं है। हमारे यारो ती चलते हैं और आगे को एक सॉन्ग लेकर कि भरी दुनिया में आखिर दिल होता है, पद्मश्री रफी जी का आवाज में। इस फिल्म में आशा परीख, मनोज कुमार ने काम किया है।

और बड़ी दुनिया में आखिर दिल, और अगली दुनिया में आखिर दिल पर माशी रफी जी का सॉन्ग ये गीत था हमारे यारो। और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं, तो चलते हैं आओ मिल जाएं। फिल्म के नाम है प्रीत, प्रेम गीत की ओर है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम गीत की ओर है कि तेरे बेवफाई के गम नहीं, मगर तू बेवफा है ये दुख भी कम नहीं। बहते है तेरी बेवफाई का गम नहीं, मगर तू बेवफा है ये दुख भी कम नहीं है। ये कभी कभी लोग बेवफाई करते हैं दोस्तों, तो दिल जो है वो बहुत टूट जाता है। और जिसको दिल टूट जाता है उसको जोड़ने में बहुत दिन लगता है। उसको कोई दवा दारू ठीक नहीं कर सकता है। अगर तो दिल को ठीक करना है तो उसको प्यार जो है, जो प्यार है वो प्यार को फिर से वापस लाना है, फिर वो प्यार को जगाना है, उस प्यार को, उस दिल को उस भरोसा देना है कि दिल अब तुम्हारा हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ये दिल के बात है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल की ओर।

और आओ मिल जाएं, आओ मिल जाए हम दोनों। फिल्म प्रेम गीत का ये सॉन्ग है जगदीप सिंह अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ सॉन्ग है दोस्तों। तो कभी कभी एक दर्द भरी शायरी होता है, जब किसी को दिल टूट जाता है तो जुड़ने में बहुत दिन लगता है, कि कहते हैं मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी ये है, मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी ये है कि भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रहती है, भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रह जाती है दोस्तों। कभी कभी कि लोग कहते हैं भी देख कुछ महसूस नहीं होता, लोग कहते हैं बिन देखे कुछ महसूस नहीं होता, हम तो बिन देखे यूं ही हर पल हर लम्हे महसूस करता हूं कि बेखुदी में सनम रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग आपको हम सुनाते हैं।

0: अजल।
1: और बेखुदी में जो सनम उड़ गए। और दोस्तों ये एक रोमांटिक सॉन्ग फुल सॉन्ग थे दोस्तों। और इसके बाद हम करते हैं जाते हैं कि कहते हैं क्या कहते हैं मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी आप तो जानते हैं दोस्तों, ये है कि भरोसा किसी यानी भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रह जाती है। तो और इसके बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग के ओर हम जाते हैं। हमारे दोस्तों है कि कभी कभी यह रात को जो लोग सो नहीं पाते हैं तो उसको वजह क्या होता है, इस गीत से आपको मिलेगी।

0: और आप की कसम किशोर जी और नैतिकेल लता जी का ये सॉन्ग है, ये अगर रात को आपको नींद नहीं आते है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्यार में कभी नींद भी नहीं आते है कि आसमान का चांद, आसमान का जो चांद है, आसमान का चांद तेरी बाहों में हो, तुझ जो तुझो तुझो चाहे तो रहो में हो, तुझको चाहे तो तेरी राहों में हो, हर वो कड़वट हो पूरा जो तेरी आंखों में हो। तो दोस्तों ये कुछ प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम यहां से है, और ये गीत जो है ये गीत हम मेरे ख्याल से हम पहला बार इसको चला रहे हैं। सॉन्ग के नाम है बुम बुम भोले, फिल्म के नाम है तारी जमी पर।
1: अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुक बुकुरे टुक बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चिकी चक चो।
2: Yeah.

फन होम्स हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

मंच का सॉन्ग है और ये है फिल्म के नाम है मिस मिस मेरी की ओर हम जाते हैं।

0: to enjoy ever.
1: और वो रात के मुसाफिर चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे. हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योगेश बहुत मस्त था ना. तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं. तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर क्या हो गया क्या नहीं होगा तो आओ चला जाए. और वो है आजा सनम.

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएगी लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिन बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाटक लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, और मूवी के नाम है मिस मैरी।

ये मर्द बड़ी दिल जर्द भरी नच जे लता जी परमान श्री मोहम्मद रफी मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि

मोहब्बत आज भी बरकरार है, क्योंकि क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है।

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली, झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग की ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मौफी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो माइटी मुकेश की आवाज में।

Out the heart of the millions, Mukesh. मूवी के नाम है श्रीमान सत्यवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी की मूड में तो हम हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे, क्या नहीं सुनाएंगे, कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतनी अच्छे लगती हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर। मूवी के नाम है तकदीर और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है, लेकिन यहां कुछ और बात है। परमा श्री मोहम्मद रफीर का

के दौड़ तो प्याले फेंक तो बोतल मेरे पीछे होलो राम बोलो राम बोलो राम बो बो बो बोलो हाय बोतल में बंद जवानी।

0: अब दरवाजा खोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो
1: और राम बोलो बोतल में बंद।

तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरेगी तो आपको हम सुनाते हैं। तो हम चलते हैं अगला जंग की ओर, और ये है परमाशीर मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत। अदालत ही अदालत, जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में, और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

और जब दिन हसीने दिल हो जवान, परमा श्री मोहम्मद रफी का जोंग है, तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ

ओए हम हैं तो कुछ प्यार के बात करते हैं, किस्मत वाले होते हैं वो लोग। दोस्तों किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टैंड 1958 का, परमाश्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

तो चले आओ। तो इसके बाद हम चलते हैं और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है। तो ये हम आपको सुनाते, किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यू ही नहीं पूरा है, जाता है इच्छा, किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को दान मुझे वाल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मोफी का नाम है, मोफी के नाम है घरस्ती, घरस्ती मतलब जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जेल लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

0: ए तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है। और नतीजे लता फरमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियां बस तुमसे शुरू बस तुम्हीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूवी के नाम तो यहां पर बताए गए हैं आओ फिर प्यार करें। इसे कुछ लिखा है दोस्तों और
1: आओ प्यार करो
0: यहां पे लिखा है, तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

और ओल्ड एंड गोल्ड जो गीत होता है उसमें स्वाद बहुत ज्यादा है। हम चलते हैं एक गीत के ओर जिस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमन का एक सुपरहिट फिल्म है जो आप इस गीत को जानते होंगे दोस्तों।

और दो लफ्जों की है ये कहानी, मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमा ने इस फिल्म में काम किया है, गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों, और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा नहीं दोस्तों, ओल्ड इन गोल्ड का प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं हमारे, तो यहां पर क्या है आओ सुना जाए ओल्ड एज गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बाहर प्रोग्राम है।

जनम ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए, ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एन महमूद इन गोवा, अथवा सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी पसंद लौट
0: हेमंत कुमार है।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाण सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं मैथी मुकेश की ओर।

0: और उजले उजले बाल लाल टोपी।
1: तो कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

बदल न जाना मौसम की तरह मूवी के नाम था। तलाश के बाद में हम जाते हैं, मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 निकट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आका याग्निक का ये जोंग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जो तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानु राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

पर्सन दो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नई खंता का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहां सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही दार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन फन्नोन्द्रेड और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशीर मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का, ये सॉन्ग सुपरहिट फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे। पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

urmă e piesa Tum Sound Duet Song Kishor Dada au Nightingale Latajika au ye super song thi ek dosto hum chalte hai ek aur ho ya aaye hai दूर से आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं।